0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्र ने कल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। अपने संबोधन में श्री मोदी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आज भारत एक बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने एक संकल्प और समर्पण के साथ देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 साल में देश ने नई रफ्तार पकड़ी है और नई गति से आगे बढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक से लेकर मोबाइल विनिर्माण तक हर क्षेत्र में कई गुणा उत्पादन बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
1: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूँ, हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: खेलों में भारत के बढ़ते प्रतिनिधित्व पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जो खेले वो खिले मंत्र के तहत भारत खेलों की दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है।
1: हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, चाहते हैं कि वो भारत में हो, और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर, स्कूल-स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प तब पूरा होगा जब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमने एक दशक के भीतर ही 100 करोड़ देशवासियों को सामाजिक सुरक्षा का कवर दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस

0: बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों की वजह से भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता और पारिवारिक रिश्ते इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार जताया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू भी शामिल हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री ने धन्यवाद दिया। इनके अतिरिक्त नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग की शुभकामनाओं के लिए आभार जताते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले का कल समापन हो गया। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज चेंगलपट्टू में एआरएम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट और आईसीएआर की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के लिए अंतिम उत्तर कुंजी जारी करेगी। पीएचडी कार्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा की उत्तर कुंजी भी आज जारी की जाएगी। दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए पिंक टिकट की सुविधा इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। परिवहन विभाग के अनुसार मुफ्त बस यात्रा की पात्र महिलाएं डीटीसी और दिल्ली क्लस्टर बसों में कागजी पिंक टिकट का इस्तेमाल कर सकेंगी। बलूच नेता मीर यार बलूच ने पाकिस्तानी सेना पर युद्ध अपराध करने और नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सुराब में हुए हवाई हमलों के वीडियो इस बात का प्रमाण है कि बलूचिस्तान में स्थानीय आबादी के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की गई। भारत श्रीलंका के बीच खेले जा रहे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी 2 विकेट पर 288 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। 2 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में कल खेल समाप्त होने तक देवदत्त 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद थे। बारिश के कारण कल खेल केवल 73 ओवर का हो सका। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: Good morning. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The nation celebrated its 80th Independence Day yesterday. On the occasion, Prime Minister Narendra Modi hoisted the national flag from the ramparts of the Red Fort and made several important announcements. Addressing the nation, the Prime Minister said, over the past 12 years, crores of citizens of the country, with their determination and dedication, made every possible effort to take the country to new heights. The Prime Minister stressed that higher dreams and stronger resolutions raise the overall scale and capability of the nation's efforts.
2: Koi bhi rashtra tab mahaan banta hai jab apne sapnon, apne sankalpon aur apne samarthya ke dam par aage badhta hai. Bade sapne hamari soch ko vistar dete hain. Hamare sankalp dhrad hone chahiye. Jab sankalp dhrad hota hai to kathinaiyon se आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है।
1: Stressing on the empowerment of youth and women for a Viksit Bharat, Prime Minister Modi announced to provide free online coaching for poor and middle-class families for various public examinations. He also announced that the government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. The first of its kind Suryapath Tiranga Global Relay concluded yesterday, completing its journey from Fiji in the east to the United States in the west, across 54 countries and multiple time zones. External Affairs Ministry said that the Suryapath Tiranga initiative was celebrated as part of the Har Ghar Tiranga campaign. Launched from the High Commission of India in Fiji, the relay carried the spirit of the Tiranga from one sunrise to the next, bringing together the Indian community and friends of India across the world.

सुप्रभात, नमस्कार एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. ये है आकाशवाणी कोलकाता का 100.1 एफएम गोल्ड, यानी कि आपका अपना खरा सोना वाला चैनल. और हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो दो सुलक्षणा पर्वत लेकर आपका मॉर्निंग शो सुहानी सुबह. भोर भई पंछी जागे, भोर भई पंछी जागे, दूर हुआ अंधियारा, दूर क्षितिज के पीछे से झांके एक नया सवेरा. उपवन के फूलों से महका हर कोना हर क्यारी, नई उम्मीद का दामन थामे जाग गई दुनिया सारी. रवि आया, किरणें फैली, दूर हुए अंधेरे, धरती पर उस चित्रकार ने फिर से नए रंग बिखरे.

ये कौन चित्रकार है, ये खूबसूरत से गीत को आपने सुना मुकेश की आवाज में। फिल्म का नाम बूंद जो बन गई मोती, गीतकार भरत व्यास, संगीतकार सतीश भाटिया। और आपको बता दूं कि स्टूडियो की घड़ी में अभी समय हो चला है सुबह के 7:06 और आपने ट्यून कर रखा है आपका ही पसंदीदा चैनल यानी कि 100.1 FM गोल्ड आकाशवाणी कोलकाता का, और सुन रहे हैं आपका मॉर्निंग पसंदीदा शो यानी कि सुहानी सुबह अपनी आरजे फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत के संग। और अब आगे बढ़ते हुए एक और बहुत ही खूबसूरत सा तराना आप सभी के लिए सुखविंदर सिंह, इस्माइल दरबार, आयशा और शैलजा की आवाज में फिल्म किशना से। जावेद अख्तर ने बड़ी खूबसूरती से इसे कलमबद्ध किया है और संगीतबद्ध किया है इस्माइल दरबार ने।

ऐसे गाने सुनने पर वाकई में एक फील गुड वाला एहसास होता है, और ये मतलब ये फील गुड वाला एहसास आपको हो रहा है, इसका एहसास मुझे यहाँ स्टूडियो में भी हो रहा है। चलिए ये अच्छी बात है, और इसी बात पर आगे बढ़ते हुए आपको बता दूं कि संडे का दिन है, और संडे का दिन यानी किसी के लिए फंडे है, तो किसी के लिए ओवरलोडेड एक्टिव रहने वाला दिन है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सारा काम जो है संडे पर छोड़ देते हैं। और

0: तारीख 16/8/2026 की सुबह आम तौर पर बादल छाए रहेंगे, हल्की से मध्यम बारिश गरज के साथ बौछार पड़ने की बहुत संभावना है। यानी कि अगर बाहर निकलेंगे तो रेनकोट, छतरी या फिर आप अपनी सुविधा के हिसाब से जो लेकर निकलना चाहते हैं लेकर निकलिएगा, ताकि आप भीजे नहीं, और अगर भीजने का इच्छा हो तो फिर रोकेगा कौन भला। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बताऊं कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर एक के बाद एक 31 डिग्री सेल्सियस और 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मैक्सिमम टेम्परेचर 30.9 डिग्री सेल्सियस, सामान्य से -1.0 कम रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर की बात करूं तो 27.6 डिग्री सेल्सियस, सामान्य से +1.1 डिग्री ज्यादा रहेगा। मैक्सिमम आर्द्रता, मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो है 95%, मिनिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी आर्द्रता जो है वो है 78%। और 15/8/2026 को सुबह 6:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से 16/8/2026 को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से इस बीच जो बारिश हुई है वो है 004.3 मिलीमीटर। तो अब आगे बढ़ूं और आगे बढ़ते हुए आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल के मछुआरों के लिए मौसम की चेतावनी 16/8/2026 से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट पर उत्तरी बंगाल की खाड़ी के आसपास तेज हवा के साथ तेज हवाएं चलने की जो संभावनाएं हैं, जिनकी स्पीड रहेगी 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है और कभी कभी 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवाएं चल सकती है। 18/8/2026 मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 16/8/2026 से 18/8/2026 तक पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट और उत्तरी बंगाल की खाड़ी के पास समुद्र में ना जाएं। पश्चिम बंगाल के तट के लिए स्वेल सर्ज अलर्ट जो है 16/8/2026 को रात 11:30 बजे से जो है वो रहेगा 16.0 से 20.0 सेकंड की अवधि वाली। तो ये तो हुई आज के लोकल फोरकास्ट की बात, लेकिन हमारा एंटरटेनमेंट इंफोटेनमेंट का कारवां यूं ही जारी रहेगा।
1: टेन 9 8 7 सिक्स 5 4 3 1, let's start the fun!

फिल्म का नाम हैप्पी न्यू ईयर, जो भी आपने गाना सुना उसी फिल्म से मैंने लिया। श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाज में इस गीत को आपने सुना। गीतकार इरशाद कामिल, संगीतकार विशालन शेखर।

स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 7:26 और इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका ही पसंदीदा मॉर्निंग शो आकाशवाणी कोलकाता के 100.1 एफएम गोल्ड पर सुहानी सुबह। चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपको बता दूं कि 16 अगस्त इतिहास के पन्नों में किन किन महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्ज किया है। वैसे ये लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन कुछ एकाद मैं आपसे साझा जरूर करूंगी। जैसे कि 16 अगस्त 1691 में अमेरिका में योर्कटाउन वर्जीनिया की खोज हुई थी। 16 अगस्त 1787 में तुर्की ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। 16 अगस्त 1906 दक्षिण अमेरिकी देश चिली में 8.6 की तीव्रता का भूकंप 20,000 लोगों की मौत हुई थी। 16 अगस्त के ही दिन 1924 में नीदरलैंड तुर्की के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 16 अगस्त 1943 बुल्गारिया के जार बोरिस तृतीय एडोल्फ हिटलर से मिले। 1946 में 16 अगस्त मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का ऐलान किया। इस दौरान हिंसा में कोलकाता के करीब 5,000 लोग मारे गए और 15,000 लोग घायल हुए थे। वहीं 16 अगस्त 1990 में चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण लोप नोर में किया। रूस में अभ्यास के दौरान 2 सुखोई विमानों की आकाश में टक्कर। 16 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पाकिस्तानी गायक नुसरत फतेह अली खान का निधन हुआ था। 16

अगस्त 2003 लीबिया ने लकरवी बम विस्फोट की जिम्मेदारी ली। 2004 16 अगस्त ऑस्ट्रेलियाई और अमेरिकी टीम ने ओलंपिक नौकायान में विश्व रिकॉर्ड कायम किया था। वहीं 2006 की बात करूं तो 16 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र परिषद ने हैती में अपने अभियान की अवधि को 6 माह के लिए बढ़ाया था। 2012 16 अगस्त विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे को इक्वाडोर ने राजनीतिक शरण दी। और अब बातें करना चाहूंगी कि 16 अगस्त को जन्मे जो विख्यात लोग हैं उनके बारे में, तो सबसे पहले उसमें मैं जिक्र करना चाहूंगी कि 16 अगस्त 1904 में जन्म हुआ था सुभद्रा कुमारी चौहान का, स्वतंत्रता सेनानी, कवित्री और कहानीकार थी। वहीं 16 अगस्त 1918 में जन्म हुआ था टी गणपति, दूसरी लोकसभा के सदस्य थे। 16 अगस्त 1920 को कोटला विजय भास्कर रेड्डी, आंध्र प्रदेश के भूतपूर्व 9वें मुख्यमंत्री थे, उनका जन्म हुआ था। और अब बॉलीवुड से भी जुड़ी कुछ जन्मदिन के बारे में बता दूं जिनका जन्मदिन आज है। 1970 में जन्म हुआ था एक्टर सैफ अली खान का, और 1970 में ही आज ही के दिन जन्म हुआ था मनीषा कोइराला का। तो बैक टू बैक क्यों ना एक गाना सैफ पर सुन ले और एक गाना, मतलब एक गाना जो सैफ पे फिल्माया गया और एक गाना जो मनीषा कोइराला पे फिल्माया गया है। तो सबसे पहले परिणीता से मैं सोनू निगम श्रेया घोषाल की आवाज में आपको सुनाऊंगी एक गीत जिसमें जो फिल्माया गया था सैफ अली खान पे, और उसके बाद खामोशी से आपको एक गीत सुनाऊंगी खामोशी फिल्म से कविता कृष्णमूर्ति और कुमार शानू की आवाज में। तो बैक टू बैक ये दोनों गाने आपके लिए।

चलिए संडे का दिन है और संडे के दिन बहुत सारे लोग जो है ना वो खेल में भी बहुत रुचि लेते हैं, तो खेल से ही संबंधित एक खबर आपसे साझा करना चाहूंगी। वो ये है कि इंडिया वर्सेस श्रीलंका फर्स्ट टेस्ट डे वन गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और श्रीलंका की टीम्स अपने आमने सामने जो हुई थी और इस मुकाबले का पहला दिन भारतीय टीम के नाम रहा। भारतीय टीम आत्मविश्वास से लबरेज है क्योंकि उसने हाल ही में श्रीलंका क्रिकेट 11 को अभ्यास मैच में 6 विकेट से पराजित किया था।

इशारों इशारों में मैंने बता दिया कि आज संडे है, छुट्टी का दिन है, तो मटर गश्ती जो है थोड़ी बहुत चलती है, क्योंकि इससे लाइफ रिफ्रेश होता है। और ऐसा इस गीत को आपने सुना मोहित चौहान की आवाज में, फिल्म तमाशा से इरशाद कामिल ने इसे बड़ी खूबसूरती से कलमबद्ध किया और ए आर रहमान ने संगीतबद्ध किया। और अब आपको बता दूं कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने वेल्स के खिलाफ हॉकी विश्व कप के शुरुआती मुकाबले में 3-1 की जीत पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट के पहले मैच में अच्छे अंतर से जीत दर्ज करना है और पूरे 3 अंक हासिल करना टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। हरमनप्रीत ने मुकाबले के बाद कहा, हमने बहुत अच्छा खेला, हमारा लक्ष्य लगातार मौके बनाना और मैच दर मैच गोल करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैन ऑफ द मैच कौन है या गोल कौन कर रहा है, टीम के लिए गोल करना जरूरी है। कप्तान ने कहा कि विश्व कप की शुरुआत जीत के साथ करना सकारात्मक रहा। उन्होंने कहा कि अच्छी जीत के साथ शुरुआत करना जरूरी था, हमने 3-1 से जीत हासिल की और 3 अंक लिए, जो अच्छा नतीजा है। और अब अच्छा ही अच्छा सब कुछ होने वाला है, तो अगला गाना आप सभी के लिए किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म मशाल से जिंदगी आ रहा हूं मैं।

जावेद अख्तर ने बड़ी खूबसूरती से इस गीत को कलमबद्ध किया है, जिंदगी आ रहा हूं मैं। किशोर कुमार की आवाज में इस गीत को सुना आपने और हृदयनाथ मंगेशकर ने इसे संगीतबद्ध किया। और अब आगे बढ़ते हुए आपको बता दूं कि स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 7:52 और 34 सेकंड। ये जो समय बताती हूँ ना बीच बीच में, वो इसलिए ताकि हमारे स्टूडियो के टाइम से आप अपनी घड़ी को जो है वो उसका टाइम सेट कर ले, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो ये मानते हैं कि आकाशवाणी का जो समय होता है जो स्टूडियो से बनाया जाता है वो होता है बिल्कुल राइट। तो हम राइट बात ही करते हैं, राइट काम ही करते हैं और राइट टाइप के इंफोटेनमेंट ही लेकर आते हैं। आपको बता दूं कि अभी तो मैं आपसे विदा ले रही हूं, लेकिन दोबारा मिलने आऊंगी कितने बजे, 11:10 पर लेकर आऊंगी कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद। और अगर इस बीच आपको मेरी याद आ जाए तो यू नेवर नो, याद तो कभी भी आ सकती है ना, तो आप ट्यून कर सकते हैं 107 FM रेनबो 10:02 से 11 बजे तक लेकर आऊंगी कार्यक्रम नॉन स्टॉप।

गपशप। और अभी चलते हैं और चलते चलते यही कहेंगे कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और चारों तरफ खुशियों के फूल बिखेरते रहिए। और क्या गाना कौन सा मैं प्ले करूंगी, चलिए बता देती हूँ। खून भरी मांग फिल्म से साधना सरगम और नितिन मुकेश की आवाज में ये गीत सुनेंगे, जिसे इंदिवर ने लिखा है और राजेश रोशन ने संगीतबद्ध किया है। और इस गीत को सुनते सुनते आज्ञा दीजिए अपनी आरजे फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत को एंड हैव अ फैंटा फैबुलस संडे।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। इससे देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा। अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 50 से अधिक देशों से होकर गुजरी सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले सैन फ्रांसिस्को में संपन्न। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना शुरू की। और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर कल नई दिल्ली में लाल किला पर ध्वजारोहण के बाद उन्होंने कहा कि भारत आज बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश के करोड़ों नागरिकों ने संकल्प और समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में कई गुना उत्पादन बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति AI के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है।
3: हमने पिछले दिनों AI इंपैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
2: प्रतियोगी परीक्षाओं में समाज के हर वर्ग की उपस्थिति को सुगम बनाने के लिए श्री मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए सरकार निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
3: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स है, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
2: राष्ट्र निर्माण में

0: बेटियों के योगदान को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटियां अब हर क्षेत्र में सबसे आगे दिख रही हैं। उन्होंने लोगों से महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनने का आह्वान किया। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने में सहयोग की अपील की।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: खेलों में भारत के बढ़ते प्रतिनिधित्व पर श्री मोदी ने कहा कि जो खेले वो खेले मंत्र के अंतर्गत भारत खेलों की दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है।
1: जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गाँव गाँव शहर शहर स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग देकर के देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने पर ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों के कारण भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले वैश्विक नेताओं का आभार व्यक्त किया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भी शामिल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिन तोब्गे की शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले कल संपन्न हो गई। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। फिजी में भारतीय उच्चायोग से शुरू हुई इस रिले में एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक तिरंगे का संदेश दुनिया भर में पहुंचाया गया। रिले का समापन सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में हुआ। इस दौरान वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे।
2: छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति डिस्क्लोजर स्कीम एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है, जो फाइनेंस एक्ट 2026 के चैप्टर 4 में शामिल है। यह योजना करदाता को एक तय कर का भुगतान करके कुछ ऐसी विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की जानकारी देने की सुविधा देती है, जिनका पहले खुलासा नहीं किया गया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के और स्कीम को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के अपने लगातार प्रयासों के तहत इस स्कीम को और इसके नियमों पर एक विस्तृत डॉक्यूमेंट जारी किया है। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन तमिलनाडु की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज चेंगलपट्टू में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के अलवर में सरस डेयरी परिसर के नए संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। वे विभिन्न दुग्ध संघों के डेयरी प्रसंस्करण और पशु आहार संयंत्रों का भी उद्घाटन करेंगे। इस दौरान राजस्थान के 17 जिलों में 6,262 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग

0: के अभ्यर्थियों का आंदोलन और तेज हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों ने विरोध के नए कार्यक्रमों की घोषणा की है।
1: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत आज झारखंड के सभी 24 जिलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया जाएगा। छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। रांची में पुतला दहन कार्यक्रम अल्बर्ट टिक्का चौक पर आयोजित किया जाएगा। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया है। ये पुष्प भारत की समृद्ध पुष्प विरासत को दर्शाने के साथ साथ उद्यान की जैव विविधता को भी समृद्ध करते हैं। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक खुला रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। यह सेवा सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर संचालित होगी। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना का उद्देश्य राज्य भर के पात्र नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा आसानी से उपलब्ध कराना है।
3: लगभग 15 लाख परिवारों को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है, जिसमें प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का नगद उपचार शामिल है। आयुष्मान भारत कार्ड प्रत्येक पात्र परिवार के सदस्य को निशुल्क जारी किए जाएंगे। राज्य के कुल 1307 निजी और 627 सरकारी अस्पताल इस योजना के अंतर्गत उपचार प्रदान करेंगे। लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले से लेकर छुट्टी मिलने के 15 दिन बाद तक योजना का लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा। आयुष्मान भारत योजना के लिए पात्र न होने वालों के लिए आज मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत लगभग 80 लाख परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: उड़ीसा की बैतरानी नदी में बाढ़ से राज्य के उत्तरी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित है। एक रिपोर्ट।
4: उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है, क्योंकि बैतरणी नदी में बाढ़ की चौथी लहर आ गई है। भद्रक जिले के अखुआपदा में नदी खतरे के निशान 18.33 मीटर को पार कर गई है और आज सुबह 7 बजे तक 18.38 मीटर पर बह रही थी। जाजपुर जिले के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, जबकि भद्रक जिले के कई गाँव अलग थलग पड़ गए हैं। राजघाट पर सालंदी नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है, जहाँ खतरे का स्तर 17 फीट है और नदी 16.50 फीट पर बह रही थी। गिंगुटी और कोकिला नदियों भी उफान पर है। IMD ने मयूरभंज और बालेश्वर के लिए रेड वार्निंग और 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मंगलवार तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। शतरंज में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने लगातार दूसरी बार ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब बरकरार रखा है। फ्रांस के पेरिस में खेले गए फाइनल में कार्लसन ने बेलारूस के ग्रैंडमास्टर डेनिस लाजाविक को 2-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद मुकेश। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, शक्ति की सप्तधारा का आह्वान। प्रधानमंत्री ने लाल किला के प्राचीर से कहा, 7 शक्तियां भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, 80 पर देश, जुबां पर युवा। पंजाब केसरी की सुर्खी है, लाल किला से वंदे मातरम की गूंज के बीच मोदी ने राष्ट्रगीत गाया, फिर तिरंगा लहराया। आम्बेडकर, नेहरू, पटेल और मुखर्जी का योगदान याद किया। जनसत्ता के अनुसार दिमागी नक्सल, अराजकता और हिंसा

0: बरकरारी चोट की है। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है, बस्तर के 93 गांवों में पहली बार दिखी तिरंगे की ताकत, नक्सल प्रभावित रहे इन गांवों में आजादी के बाद स्वतंत्रता दिवस का सार्वजनिक आयोजन। दैनिक जागरण के अनुसार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, युवा कौशल के उचित उपयोग से देश को हो सकता है भारी लाभ।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। इससे देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा, अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 50 से अधिक भारतीय मिशनों से होकर गुजरी सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले सैन फ्रांसिस्को में संपन्न। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना शुरू की। और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi urges all parties to support implementation of women's reservation in Parliament and state assemblies to strengthen women's contribution in shaping India's policies. Prime Minister announces free online coaching for competitive exams aspirants to ease financial burden on their families. 1 crore youths to be trained in artificial intelligence in next 1 year. Suryapath Tiranga, first of its kind campaign involving Indian missions in over 50 countries, concludes in San Francisco. Government rolls out foreign asset disclosure scheme for small taxpayers. And in chess, world number one Magnus Carlsen retains eSports World Cup title. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has announced to provide free online coaching for students belonging to poor and middle-class families. In his address to the nation, Mr. Modi said, the move is aimed at easing the financial burden of aspirants preparing for competitive exams. He said this will save thousands of crore rupees of middle-class families in coaching classes.
3: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
2: The Prime Minister said that the government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. He said this will enable them to take the lead in the global AI sector. Mr. Modi said the country has to focus on 3 things, cost, quality and skill.
3: हमने पिछले दिनों AI Impact Summit किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
2: The Prime Minister said today India is making its place in the world of sports. Mr. Modi said in 2030 India will host the Commonwealth Games. Prime Minister Narendra Modi has urged all parties to support the implementation of women's reservation in Parliament and state assemblies without making it a political fight. In his Independence Day address to the nation from the ramparts of the Red Fort, Mr. Modi asked them to step forward to honour women and ensure that country's women secure 33% representation in the legislative assemblies and the Lok Sabha as soon as possible. He said that women should be given the opportunity to contribute to shaping India's policies.
3: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
2: The first of its kind Suryapath Tiranga Global Relay concluded yesterday, completing its journey from Fiji in the east to the United States in the west, across 54 countries and multiple time zones. More from our correspondent.
4: External Affairs Ministry said that the Suryapath Taranga initiative

0: ও কোন লজ্জা পায় না কি করে আমি জানি না। আমরা অনেকবার বলেছি আমাদের গ্রুপ ছবি যখন তোলা হয় তখন অনেকবার ওকে বলেছি, কিন্তু ও কোনোদিন নিজের মুখ দেখাতে চায় না, নেপথ্যে থাকতে চায়। এবং নেপথ্যে ও না থাকলে আমি আমার যে কী হবে আমি জানি না, মাঝে মাঝেই আমাকে ভয় দেখায় জানেন তো, ব্ল্যাকমেলও করে। দেখা যাক, আমি আমি ওকে ছাড়া আসতে পারবো না আপনার কাছে, এইটুকু আমি আপনাকে বলে দিলাম, অন ক্যামেরা বলে দিলাম। আচ্ছা, আমায় প্রশ্ন করে নীল ধ্রুব তারা, তিলক পাল লিখেছেন, আর কে কি জয় লিখেছেন, আহা কি গাইছে সত্যি অসাধারণ যাদবেন্দ্র পণ্ডা, এতক্ষণ কোথায় ছিলেন? হ্যাঁ, যাদবেন্দ্র পণ্ডা লিখেছেন, আহা খুব সুন্দর, আমার খুবই প্রিয় নীল আকাশের নিচে ওই পৃথিবী, শ্রদ্ধেয় হেমন্তবাবুর, খুব সুন্দর লাগছে, অনেক অনেক আন্তরিক শুভেচ্ছা। জয়দীপ রায় লিখেছেন, সুপ্রভাত সকল শ্রোতা বন্ধু আর যে সংযুক্তা দিদি, আজকের শিল্পী ও আকাশবাণীর সঙ্গে যুক্ত সকলকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা, বেশ কিছু গানের অনুরোধ। সব সময় জয়দীপ রায় বাঘাযতীন থেকে অনেকগুলো গানের রিকোয়েস্ট করেন যাতে একটি হলেও তিনি শুনতে পান, তো তার মধ্যে আসলেই কোনো না কোনো কমন হয়েই যায়। আজকে যেমন
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে মুকেশ কুমার। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर कल नई दिल्ली में लाल किला पर ध्वजारोहण के बाद उन्होंने कहा कि भारत आज बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश के करोड़ों नागरिकों ने संकल्प और समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं में समाज के हर वर्ग की उपस्थिति को सुगम बनाने के लिए श्री मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए सरकार निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
2: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स है, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: राष्ट्र निर्माण में बेटियों के योगदान को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटियां अब हर क्षेत्र में सबसे आगे दिख रही हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने में सहयोग की अपील की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मित्रता के कारण भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले वैश्विक नेताओं का आभार व्यक्त किया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू भी शामिल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे की शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रैली कल संपन्न हो गई। ये रैली फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। फिजी में भारतीय उच्चायोग से शुरू हुई इस रैली में एक सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक तिरंगे का संदेश दुनिया भर में पहुंचाया गया। रैली का समापन सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में हुआ। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी का 2018 में आज ही के दिन निधन हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह ने भी अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज चेंगलपट्टू में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर कल नई दिल्ली में लाल किला पर ध्वजारोहण के बाद उन्होंने कहा कि भारत आज बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश के करोड़ों नागरिकों ने संकल्प और समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि एआई के बढ़ते उपयोग का उल्लेख करते हुए देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं में समाज के हर वर्ग की उपस्थिति को सुगम बनाने के लिए श्री मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए सरकार निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: राष्ट्र निर्माण में बेटियों के योगदान को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटियां अब हर क्षेत्र में सबसे आगे बढ़ रही हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने में सहयोग की अपील की।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मित्रता के कारण भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू भी शामिल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे की शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले कल संपन्न हो गई। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। फिजी में भारतीय उच्चायोग से शुरू हुई इस रिले में एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक तिरंगे का संदेश दुनिया भर में पहुंचाया गया। रिले का समापन सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में हुआ। इस दौरान वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया गया। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी का 2018 में आज ही के दिन निधन हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह ने भी अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए श्री मोदी ने वाजपेयी को असाधारण दूरदर्शी और उत्कृष्ट राजनेता बताया, जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित कर दिया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे। शतरंज में विश्व नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने लगातार दूसरी बार स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब अपने नाम

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना का शुभारंभ किया। 50 से अधिक देशों में भारतीय मिशनों से होकर गुजरी सूर्यपथ तिरंगा यात्रा सैन फ्रांसिस्को में संपन्न। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना के प्रभाव में हुए विवादित चुनावों पर प्रदर्शनकारियों की चिंता को लेकर तनाव बरकरार। अमरीका के मिशिगन में हुई गोलीबारी में 6 लोगों की मौत और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम अधिसूचित कर दिए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों और विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे।
1: छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति डिस्क्लोजर स्कीम एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है, जो फाइनेंस एक्ट 2026 के चैप्टर 4 में शामिल है। यह योजना करदाता को एक तय कर का भुगतान करके कुछ ऐसी विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की जानकारी देने की सुविधा देती है, जिनका पहले खुलासा नहीं किया गया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के और स्कीम को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के अपने लगातार प्रयासों के तहत इस स्कीम को और इसके नियमों पर एक विस्तृत डॉक्यूमेंट जारी किया है। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले यात्रा कल सैन फ्रांसिस्को में संपन्न हो गई। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों के मिशनों से होकर गुजरी है। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। एक रिपोर्ट।
2: तिरंगे ने दुनिया भर में पूरब से पश्चिम की ओर प्रतीकात्मक यात्रा की और फिजी से लेकर सैन फ्रांसिस्को तक दुनिया भर में मौजूद भारतीय मिशनों में इसे बारी बारी से फहराया गया। फिजी स्थित भारतीय उच्चायोग से शुरू हुई इस रिले में एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक तिरंगे का संदेश दुनिया भर में पहुंचाया गया। फिजी में सुबह 8 बजे शुरू हुई तिरंगे की ये यात्रा भारतीय मिशनों के माध्यम से पश्चिम की ओर बढ़ी और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, इंडोनेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, उज्बेकिस्तान और ओमान सहित 54 देशों में भारतीय स्वतंत्रता का जश्न मनाया गया। रिले का समापन सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में तिरंगा फहराने के साथ हुआ। इस दौरान वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी जश्न मनाया गया। रिले में प्रवासी भारतीयों और भारत के मित्रों ने उत्साह के साथ भाग लिया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दुनिया के कई देशों में भी तिरंगा फहराया गया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्लोवाकिया, साइप्रस, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल और सिंगापुर सहित कई देशों में भारत की आजादी का उत्सव मनाया गया। भारत ने सभी देशों का आभार व्यक्त किया है। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार जताया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भी शामिल रहे। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे की शुभकामनाओं के लिए आभार जताते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों की वजह से भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने रूपियो की शुभकामनाओं के लिए उनका आभार जताया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, स्लोवाकिया, साइप्रस, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल और सिंगापुर के विदेश मंत्रियों को भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसराइल में

यरूशलम के प्रसिद्ध कार्ड्स ब्रिज को भारतीय तिरंगे के रंगों में रोशन किया गया। केसरिया सफेद और हरे रंग की रोशनी भारत और इसराइल के बीच मजबूत संबंध तथा साझा मूल्यों का प्रतीक बनी। इसराइल में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि ये रोशनी दोनों देशों के मजबूत और स्थायी संबंधों को दर्शाती है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सिंगापुर, चीन और हांगकांग में भी बड़ी संख्या

0: विक्रम दुराईस्वामी ने भारी वर्षा के बावजूद तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता दिवस प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। प्रदर्शनकारियों ने कथित विवादित चुनाव, हत्याओं, जबरन गुमशुदगी और आवश्यक सामान की आपूर्ति में बाधा को लेकर चिंता व्यक्त की है। बलूच नेता मीर यार बलूच ने पाकिस्तानी सेना पर नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सुराब में हाल ही में हुए हवाई हमलों के वीडियो इस बात का प्रमाण है कि बलूचिस्तान में स्थानीय आबादी पर सैन्य कार्रवाई की गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मीर यार बलूच ने कहा कि वो सुराब के गिदार गोंधन इलाके में पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन में महिलाएं और बच्चों समेत 30 लोगों की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया कि अशांति के दौरान पाकिस्तानी बलों की कार्रवाई में करीब 100 लोग मारे गए हैं। अमेरिका के मिशन में गोलीबारी की कई घटनाओं में संदिग्ध हमलावर समेत 6 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मिसौकी काउंटी में अलग अलग स्थानों पर 5 युवकों की मौत हुई। इस घटना में 13 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई। संदिग्ध हमलावर की पहचान चैड हिकमैन के तौर पर की गई है। बड़े पैमाने पर तलाशी के बाद उसे एक पीड़ित के साथ जंगल में मृत पाया गया। पुलिस ने बताया कि सभी 6 लोगों की मौत गोली लगने से हुई। गोलीबारी की वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है। आगे की जांच जारी है। जिम्बाब्वे के करीबा झील में एक नौका के पलट जाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 72 हो गई है। इनमें 18 बच्चे भी शामिल हैं। उत्तर पश्चिमी जिम्बाब्वे में करीबा शहर से दूर दराज के ग्रामीण और मछली पकड़ने वाले समुदायों के लोगों से भरी नाव मंगलवार को तेज लहरों के कारण पलट गई थी। अधिकारियों ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है कि नाव पर कितने लोग सवार थे या कितने लोग लापता हैं। अनुमान है कि नाव की क्षमता 90 यात्रियों की थी और लगभग 153 लोग इस नौका पर सवार थे। इंडोनेशिया में कल फ्लोरेस के तट के पास आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या 50 से अधिक हो गई है। भूकंप के बाद कई और झटके महसूस किए गए। राहत और बचाव दल सबसे अधिक प्रभावित इलाकों तक पहुंचने के प्रयास में जुटे हैं। इंडोनेशिया सरकार ने मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका व्यक्त की है। दक्षिणी लेबनान में कल इसराइल के हवाई हमले में 11 लोगों के मारे जाने की खबर है। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने बताया कि अंसार गांव में एक मकान पर हुए इस हवाई हमले में 7 लोग घायल हुए हैं। एक अन्य देर अल जहरानी गांव में हवाई हमले में 4 लोग मारे गए और 17 अन्य घायल हो गए। बेल्जियम में पूर्वी इलाके में हाई फेंस में कल लगी आग से 2000 हेक्टेयर वनस्पति जलकर राख हो गई। आग बुझाने का काम लगभग 30 घंटे तक जारी रहा। स्थानीय मीडिया के अनुसार आसपास के इलाकों में लगभग 600 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वाइम्स नगर पालिका के सौर ब्राइट के 500 और बुटजेन बैक के लगभग 100 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने लगातार दूसरी बार स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब अपने नाम कर लिया है। फ्रांस के पेरिस में खेले गए फाइनल में कार्लसन ने बेलारूस के ग्रैंडमास्टर डेनिस लाजाविक को 2-0 से हराया। अमेरिका के ग्रैंडमास्टर हिकारू नाकामुरा ने अली रेजा फिरोजा को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। चैंपियनशिप में 3 सेटों का प्रारूप अपनाया गया था। श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत पहली पारी में 2 विकेट पर 288 रन से आगे खेल रहा है। कल का खेल समाप्त होने तक देवदत्त 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना का शुभारंभ किया। 50 से अधिक देशों में भारतीय मिशनों से होकर गुजरी सूर्यपथ तिरंगा यात्रा सैन फ्रांसिस्को में संपन्न। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना के प्रभाव में हुए विवादित चुनावों पर प्रदर्शनकारियों की चिंता को लेकर तनाव बरकरार। अमेरिका के मिशिगन में हुई गोलीबारी में 6 लोगों की मौत। और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good morning. This is Akashvani. I am Anuja Kumar.

0: We bring you a talk on Protection of Women from Domestic Violence Act, Access to Justice and Sakhi One Stop Center Scheme by Ankita Sarkar, Migration and Asylum Project, and Sanju Kumari, member One Stop Center. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
1: घरेलू हिंसा का अधिनियम है, टीवी एक्ट है, ये 2005 में आया है। तो पहला सवाल ये बनता है कि क्या औरतों के पास कोई तरीका नहीं था, कोई उपाय नहीं था अगर उनके साथ घरेलू हिंसा हो रहा है तो कोई भी रिलीफ मांगने का या पाने का, और ऐसा तो नहीं है। तो क्या हुआ करता था कि हमारे पास क्रिमिनल लॉज हमेशा से थे, लेकिन घरेलू हिंसा का अधिनियम जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसे एक क्वासी क्रिमिनल रेमेडी माना जाता है, और इसका ये मतलब है कि इस कानून के अंतर्गत क्रिमिनल लॉज के जो रेमेडीज है, जो रिलीफ है, वो चले नहीं जाते हैं, बट ये उनके साथ साथ उनके उनको और मजबूत बनाने में कोशिश करते हैं। तो अब अगर हम सोचें कि घरेलू हिंसा अधिनियम जो है वो 2005 में आया क्यों, उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, तो अगर हम एक्ट का थोड़ा मुआवजा करें तो हम देखेंगे कि इसमें पनिशमेंट जो है, सजा देना, इससे फोकस हटा के दूसरी चीजों पे फोकस कई ज्यादा दिया गया है कि हम सुरक्षा कैसे करें, रेसिडेंस का किस तरह से करा जाए, क्या टेम्परेरी कस्टडी की क्या बात हो सकती है, मॉनिटरी रिलीफ यानी कि पैसों के भरण पोषण की जो सुविधाएं हैं वो, इन टाइप के प्रोसेसेस कैसे किए जा सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस भी हम डीवी एक्ट के अंतर्गत देख सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हम क्यों आंसर करना चाहेंगे एक्ट के अंतर्गत, जब हमारे पास सजा देने की, जो जिन्होंने गलती की है, जिन्होंने गुनाह किया है, उनको सजा देने का मौका है। पहला सवाल ये कि पीड़िता को किस चीज की जरूरत है, और ये जो सोच है इसे हम सर्वाइवर सेंट्रिक प्रोटेक्शन बोल सकते हैं, या पीड़िता को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से कानून बनाए जा सकते हैं, ये एक नजरिया हम इस एक्ट के अंतर्गत हम देख सकते हैं। और कोई भी पीड़िता को अगर वो घर छोड़ रही है किसी भी कानूनी घरेलू हिंसा की वजह से, तो पहली चीज उनको जरूरत हो सकती है कि उनको सुरक्षा रहे और घरेलू हिंसा उनके साथ ना हो, या फिर उन्हें दिन ब दिन डे टू डे भरण पोषण की जरूरत हो सकती है, बच्चों का ख्याल कैसे रखना है, ये सवाल आते हैं। सो पीड़िता की जो नीड्स है वो कहीं ना कहीं डीवी एक्ट कई ज्यादा आंसर कर पाती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाती है, जिस तरह से क्रिमिनल लॉज कई बार सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए पहला जो एंट्री पॉइंट है किसी भी पीड़िता के लिए वो डीवी एक्ट के अंतर्गत काफी आसान बनाया गया है। इसके अंतर्गत एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट इशू है वो ये है कि कहीं भी एक्सेस टू जस्टिस की जहां हम बात करते हैं, तो किसी भी पीड़िता के लिए कोर्ट आना अपने घर से निकल के, ये रास्ता भी काफी लंबा होता है। जो भी सोसाइटल प्रेशर्स हो, फैमिली प्रेशर्स हो, खुद के अपने अंतर्गत ये हो कि हमने रिलेशंस खराब नहीं करने हैं, हमारे बच्चों का ध्यान रखना है, ये सारे जो हमारे फैमिली यूनिट के प्रेशर्स होते हैं, ये सारों को निकल के कोर्ट तक पहुंचना, ये रास्ता भी काफी लंबा होता है। और इसके लिए ना कि ये सिर्फ जरूरत है कि हमारे हम पीड़िता को बोले कि आपके पास हिम्मत होनी चाहिए, बट ओवरऑल जैसे हम आज इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी में जागरूकता होनी चाहिए ताकि पीड़िता को उस तरह का सपोर्ट भी मिल पाए। तो कम्युनिटी लेवल पे हम किस तरह से ये जागरूकता बढ़ा सके, ये एक्सेप्टेंस ला सके कि कल को जाके अगर कोई पीड़िता आगे आती है तो उन्हें बैकलैश ना फेस करना पड़े, उन्हें जितना कम रेजिस्टेंस हो सके उतना वो फेस करे, और आगे आके जुडिशियल सिस्टम जो है, चाहे वो लीगल एड के तौर पे हो, चाहे वो किसी तरह से किसी प्रोबोनो सपोर्ट के थ्रू हो, वो उसको एक्सेस कैसे कर सके, पीड़िता आके रिपोर्ट कर सके, तो उसके लिए उस तरह का माहौल भी बनाना एंटायर सोसाइटल स्ट्रक्चर में, जहाँ वो निकल के सेफ फील कर सके, सुरक्षित फील कर सके रिपोर्ट करने में और कानूनी मदद लेने में, ये एक माहौल बनाने का किस तरह से हम आगे स्टेप्स ले सकते हैं ये सोचना भी जरूरी है। सर्वाइवर सेंट्रिक प्रोटेक्शन में ये हम नहीं सोचेंगे कि सिर्फ

0: आखिरी रिजल्ट क्या होगा, क्या ऑर्डर मिल सकता है, क्या फायदा हो सकता है या आउटकम क्या है, बट क्या हम पीड़िता को कोशिश कर रहे हैं कि वो जिस समय पे चाहती है रिलीफ उस समय पे उसे वो रिलीफ मिल सके, जिस चॉइस की रिलीफ वो चाहती है, चाहे वो उस घर में रह के ही वो अपना केस चलाना चाहती है तो हो सकता है शेयर्ड हाउसहोल्ड का ऑर्डर हो, या चाहे वो किसी और घर में रह के अपना सुरक्षा रखना चाहती है, या फिर वो किसी तरह से अगर उसके साथ वापस घरेलू हिंसा होता है तो उसका प्रोटेक्शन मांग सकती है। संजू मैम से सुनेंगे कि पहले तो कि क्या एक्ट के अंतर्गत जैसे मैंने बताया कि कुछ अलग अलग प्रोटेक्शंस है सिर्फ सजा के बिना, तो ये क्या क्या प्रोटेक्शंस है और क्या ये प्रोटेक्शंस जब हम क्रिमिनल लॉज में देख रहे हैं तो हम मेनली मैरिज या मैरिटल स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, क्या डीवी का प्रोटेक्शन मैरिज के बियॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है, कौन से और रिलेशनशिप्स होते हैं, कौन से और ऐसे रिश्ते नाते होते हैं जिनको हम कवर कर सकते हैं डीवी के अंतर्गत, और इन प्रोटेक्शंस को लेने में डे टू डे ओएससी का जो इंटरवेंशन है वो किस तरह के चैलेंजेस देख रहे हैं या पीड़िता किस तरह की रेमेडीज मांग रही है जिसमें ओएससी का मदद होता है, क्योंकि जो लीगल प्रोसेस है वो डिफिकल्ट है नेविगेट करने के लिए।
1: यू वर लिसनिंग टू अ टॉक ऑन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, एक्सेस टू जस्टिस एंड सखी वन स्टॉप सेंटर स्कीम। वी स्लिप इनटू अ शॉर्ट ब्रेक।

0: वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar of Department of Justice on Protection of Women from Domestic Violence Act, Access to Justice and Sakhi One Stop Center Scheme.
2: Sakhi One Stop Center, Central Ministry की स्कीम है, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है और इसकी ओवरऑल इंडिया में 700 से 800 सेंटर्स रन कर रहे हैं। दिल्ली में ही 11 सेंटर्स हैं और ये जिला अधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अंतर्गत भी आती है, उनकी देख रेख में चलते हैं। सखी वन स्टॉप सेंटर एक्सेस करता नहीं था उस समय, महिलाओं को अपनी अवेयरनेस नहीं थी कि क्या करना है, कैसे करना है, कोर्ट जाने में वो बहुत घबराती थी, डरती थी। लेकिन सखी वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत जब वो आई हैं तो इस स्कीम में महिलाओं को एक अवेयरनेस मिली है। हम डे टू डे लोकल अवेयरनेस करते हैं, कम्युनिटी में जाते हैं और उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि सखी वन स्टॉप सेंटर के अंदर अगर आप आएंगी तो उनकी जो भी गोपनीयता है उसको बरकरार रखा जाएगा। वो बहुत ज़्यादा घबराती है इस बात को लेकर कि अगर परिवार में या सोसाइटी में ये चला जाता है, जो एक स्टिग्मा है कि हमारी बात लीक हो जाएगी। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जैसे सेक्सुअल असॉल्ट से रिलेटेड, अगर वो आती है हमसे बात करने के लिए तो सबसे पहले वो ये कहती है कि हमारी जो, अब अभी मैं FIR या लीगल प्रोसीजर में नहीं जाना चाहती हूँ, मैं सिर्फ एक इमोशनल ब्रेकडाउन जो उनका है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए वहाँ पर साइकोसोशल काउंसलर्स भी अवेलेबल होते हैं। मैं सखी वन स्टॉप सेंटर के स्ट्रक्चर के बारे में आपको थोड़ी सी रूपरेखा बता देती हूँ। सखी वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर, सोशल काउंसलर्स और पैरालीगल वर्कर्स भी होते हैं। साथ में ही विधिक सहायता के लिए वहाँ पर डालसा से ही रोस्टर लगते हैं, ऑल द टाइम लॉयर्स अवेलेबल होते हैं 10 to 5 की शिफ्ट में। और उस दौरान जो भी सर्वाइवर या जो भी महिला हमारे पास आती है, हम उनको जो भी लीगल अवेयरनेस अगर वो चाहती है, लीगल एड चाहती है, तो हम उसको वन रूम फैसिलिटी देते हैं। सखी वन स्टॉप सेंटर का मोटो ही वन रूम फैसिलिटी देना है। उसको उसी प्रेमिसेस में मेडिकल भी प्रोवाइड होगा, उसको उसी प्रेमिसेस में लीगल काउंसलिंग भी प्रोवाइड होगी, काउंसलिंग भी वही होगी। और अगर ऐसी स्थिति बनती है कि परिवार से या पति से वो निकाल दी गई है, घर से निकाल दी गई है, रात के 2 बजे भी निकाल दी गई है, तो 181 हेल्पलाइन के द्वारा उनको पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में सखी वन स्टॉप सेंटर में लाया जाता है। मैं यहाँ पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि पहले 5 दिन का सेंटर मिलता था, परंतु अभी बढ़ा कर ये सेंटर 20 दिन का कर दिया गया है ताकि उसे कहीं पर भी बिना आश्रय के ना रहना पड़े। उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी वहीं पर मौजूद स्टाफ के द्वारा देखी जाती है, वहां पर पुलिस की मौजूदगी भी रहती है, जिसे PFO बोला जाता है, पुलिस प्रोटेक्शन ऑफ।

ऑफिसर, वो वहाँ पर उसकी कंप्लेन लोकल थाने में रजिस्टर कराते हैं, साथ ही साथ उसकी डीडी एंट्री या एफआईआर दर्ज कराने में जो भी मदद चाहती है तो उसको बहुत इजी प्रोसेस के द्वारा मदद कर देते हैं। साथ ही वहाँ पर आश्रय में कपड़ा, खाना एवं मेडिकल फैसिलिटी, अगर उसको उस दौरान कोई मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत पड़ती है तो वो भी उसको प्रोवाइड की जाती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी होती है। कौन सी महिलाएं एक्सेस कर सकते हैं, मतलब इजी टू मूव सखी वन स्टॉप सेंटर में? कोई एज ग्रुप नहीं है, कोई एज बार नहीं है, आप आ सकते हैं किसी भी टाइम पर। 60 साल की उम्र से लेकर 18 साल तक का बच्चा वो आ सकता है, कोई भी, इवन उससे छोटे बच्चे भी वहां पर आ सकते हैं। और उस दौरान भी हम उन्हें चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट यानी कि चाइल्ड लाइन से कोलैब करा देते हैं। उसके द्वारा वहाँ पे काउंसलर्स जो चाइल्ड लाइन के आते हैं वो भी आते हैं। 181 हेल्पलाइन किसी भी प्रकार के लिए महिलाओं के लिए एकदम अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अब बात करते हैं सामाजिक परिवेश में, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाएं हों या फिर घरेलू हिंसा से रिलेटेड कोई भी, चाहे 20 साल हो गए हो शादी को या 25 साल हो गए हो या 2 ही महीने क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की हिंसा जो भी है। कई बार मैंने अवेयरनेस के दौरान या हमारे वन स्टॉप सेंटर में जो महिलाएं आती हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि घरेलू हिंसा के प्रकार क्या हैं, उन्हें इमोशनल हिंसा पता ही नहीं होती है। उनको ये लगता है कि बस गाली गलौज कोई बात नहीं है, पर वो बहुत इजीली मान लेती है गाली गलौज कोई बात नहीं है। सिर्फ उनके लिए हिंसा वही होती है जिससे मार दिया गया है, खून निकल गया है, वही उनके लिए एक हिंसा होती है। जब हम उनको बताते हैं कि इकोनॉमिकल हिंसा भी होती है कि आप कमा रहे हैं लेकिन आप अपनी पसंद से खर्चा नहीं कर सकते, वो भी एक

0: या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में, अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट में है अजय कुमार जी, उनके सुपरविजन में बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम्स किए हैं, वहाँ पर से बहुत सारी महिलाएं निकल के आती हैं। मैं आपको सर बताना चाहूँगी, यहाँ पर मुख्य वजह होती है कि उनके पास एजुकेशन की प्रॉब्लम है, एजुकेशन बहुत कम है। एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होने के बावजूद भी महिलाएं एजुकेशन तक रीच ही नहीं कर पा रही है, कई बार ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं, कई बार अलॉटमेंट्स के हो जाते हैं, कई बार पेरेंट्स के पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो फ्री एजुकेशन होने के बावजूद भी अपने बच्चों को वहाँ नहीं भेज पा रहे। तो हम स्कूल के साथ में समय समय पर ऐसे काउंसलिंग सेशंस करते रहते हैं ताकि एजुकेशन का महत्व उन बच्चों को समझाया जा सके। कुछ होता है सामाजिक परिवेश, कि कुछ सामाजिक परिवेश में ये होता है कि हम ज्यादा लड़कियों को पढ़ाएंगे तो वो बिगड़ सकती हैं, जो कि उनकी पेरेंटिंग काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है, तो सखी वन स्टॉप सेंटर पेरेंटिंग काउंसलिंग भी करता है। अब बात आती है कि वो किस किस अधिनियम के तहत जा सकती हैं, तो हम उन महिलाओं को ये समझाते हैं कि अगर आपका शेयर हाउस होल्ड है वहां पर भी आप उनका रेसिडेंशियल राइट ले सकते हैं, आश्रय का आपको अधिकार है, आप मेंटेनेंस के लिए फाइल कर सकते हैं, ये मैटर नहीं करता कि शादी को कितना समय हो गया, आप अर्न करती हैं या नहीं करती हैं। पहले तो आप अपनी उस परिवेश से निकलने की कोशिश करिए, जब आपके साथ जो भी किस्म की हिंसा हो रही है उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। मैं अपने काउंसलिंग सेशंस में हमेशा महिलाओं को बोलती हूँ कि जो भी हिंसा आप सहन करोगे तो सामने वाले को और बढ़ावा मिलता है, हिंसा कभी भी सहन नहीं की जाती है। पहले भी कई बार होता है नो का मतलब नो, तो पुरुषों को भी ये चीज समझनी पड़ेगी, और ये चीज हम काउंसलिंग में भी समझाते हैं कि अगर महिला किसी भी तरीके से नो कर रही है तो इसका मतलब नो ही है, नो का मतलब यस कभी नहीं हो सकता। होप कि आने वाले समय पर ऐसे सेंटर्स की जो भी एक्सेस मतलब बहुत इजी टू रीच हो महिलाओं के लिए, और ऐसे सेंटर्स में किसी भी प्रकार का कोई सारा फीमेल स्टाफ रहता है तो सर्वाइवर्स बहुत इजी से आकर अपनी बातें बता देती हैं। कई बार वो ऐसी बातें भी बता देती हैं जिनको वो कहती है कि मैडम नोट मत कीजिएगा केस सीट पे, क्योंकि मैं तो ये आपसे फैमिलियर होकर ही बता रही हूँ। तो वन स्टॉप सेंटर का एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर होता है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी लोग सेंटर में विजिट करें तो अच्छे से समझ पाएंगे। धन्यवाद।
1: यू हैड बीन लिसनिंग टू अ टॉक ऑन Protection of Women from Domestic Violence Act, Access to Justice and Sakhi One Stop Center Scheme by Ankita Sarkar, Migration and Asylum Project and Sanju Kumari, member, One Stop Center. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर कल नई दिल्ली में लाल किला पर ध्वजारोहण के बाद उन्होंने कहा कि भारत आज बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश के करोड़ों नागरिकों ने संकल्प और समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति AI के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं में समाज के हर वर्ग की उपस्थिति को सुगम बनाने के लिए श्री मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए सरकार निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने में सहयोग की भी अपील की।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मित्रता के कारण

भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जो भी शामिल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे की शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग और प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को भी श्री मोदी ने धन्यवाद दिया। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले कल संपन्न हो गई। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। फिजी में भारतीय उच्चायोग से शुरू हुई इस रिले में एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक तिरंगे का संदेश दुनिया भर में पहुंचाया गया। रिले का समापन सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में हुआ। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना 2026 अधिसूचित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी का 2018 में आज ही के दिन निधन हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक सदैव पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। संत श्री रामकृष्ण परमहंस की पुण्यतिथि पर गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। शतरंज में विश्व नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने लगातार दूसरी बार स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। फ्रांस के पेरिस में खेले गए फाइनल में कार्लसन ने बेलारूस के ग्रैंड मास्टर डेनिक लाजविक को 2-0 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बीते हुए पल लेके आए हैं यादों की बारात। आप सुन रहे हैं लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। FM गोल्ड।

बहुत ही म्यूजिकल होता है, अच्छा होता है, बड़ा प्यारा सा लगता है। तो आप सभी का तहे दिल से 100.1 एफएम गोल्ड आकाशवाणी कोलकाता के खरा सोना पर स्वागत करती हूं मैं। कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद में। पहला गाना आपने सुना फिल्म गाइड से, गाता रहे मेरा दिल किशोर कुमार की आवाज में, और संगीतबद्ध किया है इस गीत को एसटी बर्मन ने। दूसरा गाना छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा, फिल्म पेइंग गेस्ट से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में, और इसमें भी संगीत था एसटी बर्मन का। तो आपने गौर किया होगा कि दोनों गाना मैंने सुनाया और मैंने कहा कि इसमें संगीत जो है वो एसटी बर्मन का है। तो यही है कि आज रविवार के दिन हम आपको वही सारे गाने सुनाऊंगी जिसमें संगीत जो है वो एसटी बर्मन का है और आवाज जो है वो किशोर कुमार की, और उनके साथ हो सकता है किसी फीमेल आर्टिस्ट की भी, लेकिन मुख्य रूप से इतना तो आप समझ ही गए कि किशोर कुमार और एसटी बर्मन की जोड़ी को लेकर मैं आई हूं आज। संगीतकार एसटी बर्मन और पार्श्व गायक किशोर कुमार की जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को कई अमर और जादुई गाने दिए हैं। जब किशोर कुमार पहली बार अपने बड़े भाई अशोक कुमार के जरिए एसटी बर्मन से मिले थे तो किशोरदा ने उनका एक बंगला गाना गाकर उन्हें सुनाया था। इस पर बर्मन साहब ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो मुझे ही कॉपी कर रहा है, पहली मुलाकात और अनूठी शैली बंगाली गाना। तो चलिए ये तो थी शुरुआत की बात, और अशोक कुमार जो है वही मुलाकात करवाए थे। आगे भी एक से बढ़कर एक गाने आप सुनेंगे। अगला गाना आप सभी के लिए फिल्म प्रेम पुजारी से किशोर कुमार की आवाज में, गीतकार नीरज, संगीतकार एसटी बर्मन। फूलों के रंग से, दिल के कलम से।

0: रहेगा।
1: स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 11:20 और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद। आप ही अपनी आरजी फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत के साथ। ऐसा है दोस्तों कि मतलब हर रोज कुछ अलग तो होना चाहिए, तो मैंने भी सोचा आज बैक टू बैक दो गाने सुनाऊं, उसके बाद मैं आपका स्वागत करूं, क्योंकि गाने सुनाकर स्वागत करने का अंदाज भी

शुरुआती दिनों में किशोर कुमार ने बर्मन साहब के सामने उन्हीं की शैली में गाना गाया था। एसडी बर्मन ने किशोर कुमार की आवाज की खनक और उनकी अनूठी शैली को तुरंत पहचान लिया। बेटे जैसा प्यार करते थे एसडी बर्मन साहब किशोर कुमार को। बर्मन साहब किशोर कुमार को एक बेटे की तरह मानते थे और उनके बीच एक गहरा आत्मिक रिश्ता बन गया था। कभी कभार तो ऐसा भी होता था कि आधी रात को फोन करते थे और संगीत तैयार करके उसकी धुन सुनाने के लिए परेशान हो जाते थे। ऐसा था दोनों के बीच का गहरा रिश्ता। अगला गीत आप सभी के लिए फिल्म जुगनू से।

लेके मैं बारात कभी आऊंगा दिल पे हाथ से लिख ले बात ये वादा ये रहा तेरे घर लेके मैं बारात कभी आऊं तेरा पीछा ना ना

शुरू की घड़ी में समय उछला है 11:33 और 44 सेकंड और इस वक्त आपने ट्यून कर रखा है आकाशवाणी कोलकाता का 100.1 FM गोल्ड खरा सोना वाला चैनल और सुन रहे हैं कार्यक्रम डो आ गई उनकी याद। इस सफर में आपके साथ है आपकी रेडियो दोस्त सुलक्षणा पर्वत। और ऐसा है दोस्तों, आज हम उन गानों को लेकर आए हैं जिसमें संगीत है SD बर्मन का और आवाज़ किशोर कुमार का, और हाँ किसी किसी गाने में आपको किसी फेमस प्लेबैक सिंगर का भी साथ रहेगा किशोर कुमार के साथ। और फिलहाल अगला गाना मैं आपको सुनवाना चाहूँगी फिल्म आराधना से, और ये फिल्म रिलीज़ हुई थी इन द ईयर 1969। इस फिल्म ने दोनों के करियर की तकदीर बदल दी। जादुई नगमे, मेरे सपनों की रानी और रूप तेरा मस्ताना गाने ने किशोर कुमार को सुपरस्टार बना दिया, और रूप तेरा मस्ताना के लिए किशोर कुमार को उनका पहला फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। तो चलिए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म आराधना से उस गीत को जिसे कलमबद्ध किया आनंद बख्शी ने, संगीतबद्ध किया SD बर्मन ने। गीत के बोल क्या, पूरा का पूरा गाना ही सुनिए।

0: अगला गाना फिल्म दीवानगी से किशोर कुमार की आवाज में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार एस टी बर्मन।
1: ए, सुनो तो, क्यों रूठी हो?

ऐसा है दोस्तों कि कुछ गाने ऐसे होते हैं जब आप सुनते हैं तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, और जब मंत्रमुग्ध होते हैं तो कहीं ना कहीं खो जाते हैं। अपने एक इंटरव्यू में किशोर कुमार ने बताया था कि एक बार तो आधी रात में एसडी बर्मन साहब ने किशोर कुमार को कॉल किया था। किशोर कुमार डर गए थे कि इतनी रात को दादा का फोन क्यों आया। घबराते हुए फोन उठाकर किशोर कुमार ने कहा, दादा आपने इतनी रात को कॉल किया है, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? बर्मन साहब ने कहा, नहीं रे, गड़बड़ काहे की, मैंने एक धुन बनाई है, सुन तू सुन तो कैसा बना है। फिर वो फोन पर ही गाने लगते थे। और ऐसा था कि मतलब किशोर दा ने आधी नींद में जो उनकी गाने की लाइन सुनते थे वो ठीक से जो है समझ नहीं पाते थे। तो फिर किशोर दार को डांट लगाई, स्टूपिड ये कैसे गाता है तू, ठीक से नहीं गा रहा, ठीक से गा ना। इस पे किशोर कुमार कहते थे, दादा अभी रात के 12 बजे हैं और नींद में मुझे बहुत जोर से घेर लिया है, बहुत तेज नींद आ रही है मुझे। इतना सुन बर्मन साहब कहते हैं, अच्छा अच्छा ठीक है, अभी सो जा लेकिन सुबह रिहर्सल पर आ जाना। तो ऐसी थी उन दोनों की बीच का जो रिश्ता था, बहुत ही मधुर, पिता पुत्र जैसा था। अगला गीत फिल्म 3 देवियों से किशोर कुमार की आवाज में, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार एसटी बर्मन।

बर्मन साहब, एसटी बर्मन साहब किशोर कुमार की आवाज का बहुत ध्यान रखते थे। वे हमेशा किशोर कुमार से ज्यादा उछल कूद करने से मना करते थे। वो फोन कर किशोर कुमार से कहते, अगर तू अपनी आवाज को नहीं संभालेगा तो आवाज भी तेरे को नहीं संभालेगा। एक दिन किशोर कुमार एसटी बर्मन साहब के साथ फिल्म प्रेम पुजारी के प्रीमियर पर पहुंचे। वहां किशोर कुमार ने एसटी बर्मन साहब से कहा, दादा कल रिकॉर्डिंग है और इस एयर कंडीशन के कारण मेरी आवाज थोड़ी गड़बड़ लग रही है। बर्मन साहब ने कहा कि थिएटर के मैनेजर को बुलाकर पूरे थिएटर का एयर कंडीशन मशीन ऑफ करने के लिए कह दिया। कभी कभी बीच रास्ते पर अगर बर्मन साहब को किशोर कुमार दिख जाते तो उन्हें बीच रास्ते पर गाड़ी रोककर रिहर्सल कराते। पूरे रास्ते पर ट्रैफिक जाम हो जाता था। तो अब इसी बात पे क्यों ना सुन लिया जाए चलती का नाम गाड़ी से। अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में, संगीतकार एसटी बर्मन, गीतकार मशहूर सुल्तानपुरी। एक लड़की भीगी भागी सी।

अंतिम गाने की रिकॉर्डिंग का किस्सा बहुत भावुक है, किशोर कुमार और एसटी बर्मन से जुड़ा हुआ। जब किशोरदा बर्मन साहब के लिए आखिरी गाना गा रहे थे, उस समय वे स्टूडियो में मौजूद नहीं थे बल्कि अस्पताल में थे। इंटरव्यू के दौरान किशोर कुमार ने बताया कि जब बर्मन साहब के घर गाने की रिहर्सल चल रही थी तो बर्मन साहब की तबीयत खराब हो रही थी। रिहर्सल कर जब किशोरदा अपने घर के लिए निकले तो उसके कुल 30 मिनट बाद बर्मन साहब की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने को कहा तो बर्मन साहब ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि किशोर की रिकॉर्डिंग होने के बाद ही अस्पताल जाएंगे। एसडी बर्मन के बेटे राहुल देव बर्मन को अपने पिता की हालत देखी नहीं गई, वे तुरंत किशोर कुमार के पास पहुंचे और पूरी बात बताई। किशोर कुमार बर्मन साहब से मिलने पहुंचे और वहां जाकर अपनी आवाज़ जानबूझकर खराब करके बोले कि दादा मेरी आवाज़ अभी कितनी खराब है, कुछ दिनों के लिए रिकॉर्डिंग टाल दी जाए और अस्पताल चले जाइए। बर्मन साहब ने किशोरदा का हाथ पकड़ते हुए कहा कि देख किशोर, गाना अच्छा होना चाहिए रे, अगर मैं रिकॉर्डिंग के समय ना भी रहूं तब भी सोचना कि मैं वही हूं और वैसे ही गाना जैसे मैं चाहता हूं। जिसका डर था वही हुआ। बर्मन साहब रिकॉर्डिंग के वक्त स्टूडियो में मौजूद नहीं थे। किशोर कुमार के गाने रिकॉर्ड करने के बाद राहुल देव बर्मन गाने का टेप लेकर अस्पताल पहुंचे और बर्मन साहब को गाना सुनाया। गाना सुनने के बाद बर्मन साहब ने अपने बेटे से कहा, पंचम मुझे मालूम था किशोर ऐसा ही गाएगा। वो गाना अमिताभ बच्चन और जया भादुरी की फिल्म मिली से थी, बड़ी सुनी सुनी है जिंदगी। मौसम संबंधी सूचना है, मध्यम गरज और बिजली के साथ तेज बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी। अगले 2-3 घंटों में 11:45 से पूर्वी मिदनापुर जिले के कुछ हिस्सों पर असर पड़ने की बहुत संभावना है। और अब सुलक्षणा को आज्ञा दीजिए, किशोर कुमार की आवाज में बड़ी सुनी सुनी है ये जिंदगी सुनिए। और इसी के साथ कहूंगी नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र

0: यादव करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का एक मंच है। मंत्रालय के अनुसार भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के लिए प्राथमिकता वाले चार क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, दावानल और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और अनुकूलन शामिल हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे। छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है, जो वित्त अधिनियम 2026 योजना के अध्याय 4 में शामिल है। ये योजना करदाता को तय कर का भुगतान करके कुछ ऐसी विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की जानकारी देने की सुविधा देती है, जिनका पहले खुलासा नहीं किया गया था। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। 15 सितंबर तक ये खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया है। ये पुष्प भारत की समृद्ध पुष्प विरासत को दर्शाने के साथ साथ उद्यान की जैव विविधता को भी समृद्ध करते हैं। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक खुला रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। यह सेवा सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर संचालित होगी। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए पिंक टिकट की सुविधा इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। परिवहन विभाग के अनुसार मुफ्त बस यात्रा की पात्र महिलाएं डीटीसी और दिल्ली क्लस्टर बसों में कागजी पिंक टिकट का इस्तेमाल कर सकेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस के महाप्रयाण दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, झारखंड, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का मंच है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे। छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है जो वित्त अधिनियम 2026 के

0: अध्याय 4 में शामिल है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून की यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए यूजीसी नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्रत्येक उत्तर पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। एनटीए ने कहा है कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 18 अगस्त ही है। राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। ये 15 सितंबर तक खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। रखरखाव के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन भी उपस्थित थे। केरलम का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव तिरुवोणम 26 अगस्त को मनाया जाएगा। उत्सव को लेकर उल्लास का माहौल है। आज अथम के साथ राज्य में ओणम की शुरुआत हो गई है। उधर जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की मंडी तहसील स्थित प्राचीन बाबा बुद्धा अमरनाथ मंदिर की 12 दिन की वार्षिक श्री बुद्धा अमरनाथ यात्रा कल शुरू होगी। यात्रा इस महीने की 28 तारीख तक चलेगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना होगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। भारत दूसरी बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु अपना पहला मैच कल खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। आयुष शेट्टी पहले दौर में मौजूदा चैंपियन चीन के शी युकी से मुकाबला खेलेंगे। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी से भारत को पदक की उम्मीद है। महिला डबल्स में ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपी चंद चुनौती पेश करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The National Testing Agency, NTA, has released the provisional answer keys for 84 subjects of the UGC NET June 2026 examination. The NTA has also opened the challenge window, which will remain open till the 18th of August. Candidates can challenge the answer keys online through the official UGC NET portal. It added that candidates must support e-challenge with documentary evidence. The agency also noted challenges submitted through any other mode will not be entertained. The nation pays homage to former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee on his death anniversary today. The BJP stalwart had breathed his last on this day in 2018. President Draupadi Murmu, Vice President CP Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi paid floral tributes to former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee at his memorial Sadaiv Atal in the national capital today. Former President Ramnath Kovind, Deputy Chairman of Rajya Sabha Harivansh, Lok Sabha Speaker Om Birla, Union Minister Rajnath Singh, Delhi Chief Minister Rekha Gupta and BJP National President Nitin Naveen were also present.

0: World Championship starting from tomorrow till August 23rd at the Indira Gandhi Stadium in New Delhi. This will be only the second time India hosts the tournament after the 2009 edition. Indian players have won at least one medal at every World Championships since 2011. The country has claimed 14 medals across the last 11 editions. A report.
1: PV Sindhu will lead India's challenge in women's singles. The former world champion is targeting a sixth World Championships medal after winning the Japan Open earlier this year. In men's singles, Lakshya Sen will look to make a deep run, while Ayush Shetty faces defending champion and top seed China's Shi Yuqi in the opening round. The men's doubles pair of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will be among India's strongest medal hopes. Teresa Jolly and Gayatri Gopichand will spearhead India's women's doubles challenge, while Dhruv Kapila and Tanisha Krasto will lead the mixed doubles campaign. India is yet to win a world championship medal in the mixed doubles. Jagyasa Pandey, Akashwani News, Delhi.
0: In cricket, Bangladesh secured a historic 9-wicket victory over Australia in the first test match of Mirara Oval in Darwin, Australia today. It was Bangladesh's first test win on Australian soil and only its second victory over Australia. Mehdi Hasan Miraz was the first key performer in the match. He scored a crucial half century in Bangladesh's first innings and then took 5 wickets in the second innings as Australia were bowled out for 284. Cameron Green offered Australia hope with 104 runs, his third test century and first in Australia. But Bangladesh's bowlers kept control and restricted the hosts to lead of just 56 runs. Bangladesh then chased the modest target in only 14.2 overs. The Directorate of Revenue Intelligence has dismantled a major network involved in importing Southeast Asian areca nuts into India by falsely declaring them as being of Bangladeshi origin and fraudulently availing concessional duty benefits under the South Asian Free Trade Area. And now before we end the bulletin, the headlines once again. NTA releases provisional answer keys for 84 subjects of UGC NET 2026. Objections window to remain open till Tuesday. Students protesting against JPSC-JSSC exam irregularities in Jharkhand demand resignation of Chief Minister Hemant Soren. Union Home Minister Amit Shah unveils statue of Atal Bihari Vajpayee in Rajasthan as nation pays homage on former Prime Minister's death anniversary. Fresh low pressure over Northwest Bay of Bengal intensifies flood threat in northern Odisha. In badminton, India set to host BWF World Championships beginning tomorrow. And in cricket, Bangladesh secure historic first test win in Australia. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी किए। आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा बढ़ा। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू होगी। और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत, ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से दी मात। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। एक रिपोर्ट।
3: छात्र आधिकारिक यूजीसी नेट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उत्तर कुंजी को चुनौती दे सकते हैं। प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने के लिए ₹200 प्रति प्रश्न का प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा। छात्रों को प्रत्येक चुनौती के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। किसी अन्य माध्यम से भेजी गई चुनौतियों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रोसेसिंग शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि इस महीने की 18 तारीख है। NTA ने बताया कि शेष 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य

और समाजशास्त्र के प्रश्न पत्रों में विभिन्न प्रकार की त्रुटियों से संबंधित शिकायतों की जांच के लिए एक समिति गठित की गई थी। एनटीए ने कहा कि समिति की सिफारिशों के आधार पर इन तीनों विषयों के संबंध में अलग से सार्वजनिक सूचना आज जारी की जाएगी। एनटीए ने छात्रों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट और आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर प्रकाशित सूचनाओं पर ही

0: तेज हो गया है। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व लंबे समय तक विपक्ष में रहे थे, फिर भी उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और यही कारण है कि उन्हें अजात शत्रु कहा जाता था। श्री शाह ने यह बात श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर कही।
2: 16 अगस्त आज ही के दिन अटल जी हम सब के बीच में से विदा लिए थे। अटल जी की याद में इस पवित्र भूमि पर आज एक बहुत बड़ी 21 फीट की प्रतिमा लगाने का काम और एक भव्य स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है।
0: श्री शाह ने कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना श्री वाजपेयी के ही कार्यकाल में हुई थी। उनकी पहल के कारण जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए कई कार्य हुए, जिसे मौजूदा सरकार ने भी आगे बढ़ाया है और कई ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जनजातीय लोगों के हितों और अधिकारों की रक्षा की गई है। श्री शाह आज अलवर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी श्री वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने आज पार्टी कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। एक रिपोर्ट।
3: भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का मंच है। मंत्रालय के अनुसार भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के लिए प्राथमिकता वाले 4 क्षेत्रों की पहचान की है। में सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वन संवर्धन, दावानल और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और अनुकूलन शामिल है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के विरोध का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह में वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के गायन को रुकवाने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि ऐसा करके कांग्रेस ने राष्ट्रगीत का अपमान तो किया ही, संविधान और देश की जनता का अपमान भी किया।
4: हमने कल जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, हमने कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी द्वारा किया गया विरोध में देखा। कांग्रेस ने सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स का ही अपमान नहीं, इस देश के संविधान का, इस देश की संप्रभुता अखंडता का और इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है वंदे मातरम के उद्घोष का विरोध करते हुए।
0: भाजपा के

0: आरोपों पर कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर पार्टी मुख्यालय में वंदे मातरम का पूरा गायन हुआ था। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज हरियाणा में करनाल में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये अभियान इस महीने की 9 तारीख से 17 तारीख तक पूरे देश में चलाया जा रहा है। तिरंगा यात्रा को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने रवाना किया। राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
1: अमृत उद्यान के संस्करण में देशज और स्थानीय ग्रीष्मकालीन पुष्प प्रमुख आकर्षण है। इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। वहीं रखरखाव कार्य के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: केरलम का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव तिरुवोणम 26 अगस्त को मनाया जाएगा। उत्सव को लेकर उल्लास का माहौल है। आज अथम के साथ राज्य में ओणम की शुरुआत हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: ओणम के औपचारिक समारोह आज अथम के साथ शुरू हो गए हैं और पूरे केरल में मनाए जा रहे हैं। अथम की खास पहचान अथ पुक्कलम है, जिसमें घरों में रंग बिरंगे फूलों से कालीन सजाए जाते हैं। इसमें तिरुवोणम तक हर दिन फूलों की एक नई परत जुड़ी जाती है। मध्य केरल के त्रिपुनितुरा में आयोजित होने वाला भव्य अथा चमयम जुलूस भी ओणम समारोह का प्रमुख आकर्षण है। इसमें पारंपरिक कला रूपों और प्रस्तुतियों के माध्यम से राज्य की समृद्ध संस्कृति और विरासत की झलक देखने को मिलती है। उधर सबरीमाला मंदिर आज मासिक पूजा के लिए खोल दिया गया है। विशेष ओणम पूजा 24 से 28 अगस्त तक होगी। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अंजुम आलम।
0: उधर जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की मंडी तहसील में स्थित प्राचीन बाबा बुड्ढा अमरनाथ मंदिर की 12 दिन की वार्षिक श्री बुड्ढा अमरनाथ यात्रा कल शुरू होगी। श्रावण माह में होने वाली यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। पुदुचेरी में आज डी ज्यूरे ट्रांसफर डे मनाया जा रहा है। ये दिन पुदुचेरी के भारत में विलय के स्मरण में मनाया जाता है। इस अवसर पर पुदुचेरी के गृह मंत्री ए नमस्सिवयम ने किझूर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यहां 1954 में भारत में विलय को लेकर ऐतिहासिक जनमत संग्रह हुआ था। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइबर कुश्ती 2026 नामक एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमता हैकाथॉन का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा आकलन में मानवीय निर्णय क्षमता का परीक्षण और उसे मान्यता प्रदान करना है। साइबर कुश्ती के लिए कल से शुरू हुआ पंजीकरण अगले महीने की 10 तारीख तक जारी रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में एक बार फिर हवा का कम दबाव का क्षेत्र बन जाने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है।
3: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल उत्तरी ओडिशा तट पर कम दबाव का एक नया क्षेत्र बना है, जिससे राज्य में बाढ़ की समस्या और बढ़ गई है। IMD ने भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। उत्तरी ओडिशा के कुछ हिस्सों में खासकर कल और परसों बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। बैतरणी, ब्राह्मणी, सालंदी, जलका और बूढ़ा बलंग नदियों ने बड़े इलाकों को जलमग्न कर दिया है। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज, केंवझर और केंद्रापड़ा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 500 से ज्यादा गाँव में लगभग 2,70,000 लोग प्रभावित हुए हैं। 95,000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है और बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए अधिकारी हाई अलर्ट पर है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इधर राजधानी दिल्ली में आज शाम हल्की वर्षा हो सकती है। और अब खेल जगत की हलचल।

0: के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। भारत दूसरी बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले वर्ष 2009 में ये चैंपियनशिप भारत में हुई थी। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन PV सिंधु कल अपना पहला मैच खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी से भारत को पदक मिलने की उम्मीद है। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद चुनौती पेश करेंगी। मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो भारत की अगुवाई करेंगे। भारत ने अब तक विश्व चैंपियनशिप के मिक्स्ड डबल्स में कोई पदक नहीं जीता है। और अगर क्रिकेट की बात करें तो बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मैच में 9 विकेट से हरा दिया है। ये ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत है और ऑस्ट्रेलिया पर कुल मिलाकर दूसरी। दोनों देशों के बीच दूसरा टेस्ट मैच 22 अगस्त से मैके में खेला जाएगा।
0: महान संत श्री राम कृष्ण परमहंस के महाप्रयाण दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत के महान विचारक और माता काली के परम भक्त श्री राम कृष्ण परमहंस ने भारतीय सनातन परंपरा की गहन शक्ति और आध्यात्मिक चेतना को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। NTA ने इस वर्ष जून में हुई UGC नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी किए। आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय। झारखंड में JPSC JSSC परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान में वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा बढ़ा। BWF विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू होगी और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरा होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। कल इस संबंध में पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि श्री अटल

0: बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व लंबे समय तक विपक्ष में रहे थे, फिर भी उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और यही कारण है कि उन्हें अजात शत्रु कहा जाता था। श्री शाह ने ये बात आज श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा का अनावरण करते हुए कही। श्री शाह आज अलवर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में एक बार फिर हवा का कम दबाव का क्षेत्र बन जाने के कारण उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार तक बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। वैतरणी, ब्राह्मणी, सालंदी, जालका और बुद्ध बालंग नदियों में उफान के कारण 6 जिलों में कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। इनमें बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज, क्योंझर और केंद्रपाड़ा जिले शामिल हैं, जिन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया है। पुदुचेरी में आज डी ज्यूरे ट्रांसफर डे मनाया जा रहा है। ये दिन पुदुचेरी के भारत में विलय के स्मरण में मनाया जाता है। इस अवसर पर पुदुचेरी के गृह मंत्री ए नमस्सिवयम ने कीझूर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यहाँ 1954 में भारत में विलय को लेकर ऐतिहासिक जनमत संग्रह हुआ था। केरलम का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव तिरुवोणम 26 अगस्त को मनाया जाएगा। इस उत्सव को लेकर उल्लास का माहौल है। आज अथम के साथ राज्य में ओणम की शुरुआत हो गई है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। भारत दूसरी बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु कल अपना पहला मैच खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। आयुष शेट्टी का पहले दौर में मौजूदा चैंपियन चीन के शी युकी से मुकाबला होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी से भारत को पदक की उम्मीद है। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद चुनौती पेश करेंगी। मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो भारत की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The National Testing Agency, NTA, has released the provisional answer keys for 84 subjects of the UGC NET June 2026 examination. Our correspondent reports, the NTA has also opened the challenge window, which will remain open till the 18th of August.
2: Candidates can challenge the answer keys online through the official UGC NET portal. A processing fee of 200 rupees per question challenged will be applicable. Candidates must support each challenge with documentary evidence. Challenges submitted through any other mode will not be entertained. The last date for payment of the processing fee is 18th of this month. The NTA said a committee was constituted to examine complaints regarding various types of errors in the question papers for the remaining three subjects, including English, Commerce and Sociology. It said that based on the committee's recommendations, a separate public notice concerning these three subjects will be issued later today. Saqlain Akhtar for Akashwani News, Delhi.
1: Union Home Minister Amit Shah has said that former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee spent a long period in the opposition before becoming Prime Minister, but he never compromised on his principles. He said this is why Vajpayee was known as Ajat Shatru, a person without enemies. Mr. Shah was addressing a program in Neem Bahera in Chittorgarh district of Rajasthan today after unveiling a statue of Atal Bihari Vajpayee and inaugurating various development projects on the occasion of Vajpayee's death anniversary. Mr. Shah said that as Prime Minister, Vajpayee always kept nation first and took several historic decisions.
3: 16 August, aaj hi ke din.
2: On this day, we remember Shri Atalji, who left us for his heavenly abode. To honor his remarkable life and enduring legacy, we are establishing a 21-foot-tall statue and a grand memorial in his memory. A statue worth 1.5 crore rupees has been established as a tribute to his extraordinary contribution to the nation. I sincerely thank all who contributed to this noble cause with their dedication and hard work.
3: मैं बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन देना चाहता हूँ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुए यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए यूजीसी नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्रत्येक उत्तर पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। एनटीए ने कहा कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 18 अगस्त है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइबर कुश्ती 2026 नामक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता हैकाथॉन का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा आकलन में मानवीय निर्णय क्षमता का परीक्षण और उसे मान्यता प्रदान करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व लंबे समय तक विपक्ष में रहे थे, फिर भी उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और यही कारण है कि उन्हें अजात शत्रु कहा जाता था। पुदुचेरी में आज डी ज्यूरे ट्रांसफर डे मनाया जा रहा है। ये दिन पुदुचेरी के भारत में

के स्मरण में मनाया जाता है। इस अवसर पर पुदुचेरी के गृह मंत्री ए नमस्सिवायम ने किझूर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यहां 1954 में भारत में विलय को लेकर ऐतिहासिक जनमत संग्रह हुआ था। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में एक बार फिर हवा का कम दबाव का क्षेत्र बन जाने के कारण उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार तक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। बैतरणी, ब्राह्मणी, सालंदी, जालका और बुद्ध बालंग नदियों में उफान के कारण 6 जिलों में कई इलाके जलमग्न है। इनमें बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज, क्योंझर और केंद्रपाड़ा जिले शामिल है, जिन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया है। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन पहली पारी में ताजा समाचार मिलने तक 5 विकेट पर 364 रन बना लिए हैं। बारिश के कारण आज पहले और दूसरे सत्र का खेल नहीं हो सका। और BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। भारत दूसरी बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन PV सिंधु कल अपना पहला मैच खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। आयुष शेट्टी का पहले दौर में मुकाबला मौजूदा चैंपियन चीन के शी युकी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर राजस्थान के अरवर में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि 2014 के बाद से देशभर में कई विकास कार्यक्रमों की शुरुआत हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों की अंतिम उत्तर पुस्तिका जारी कर दी है। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए यूजीसी नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्रत्येक उत्तर पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। एजेंसी ने कहा कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार्य नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 18 अगस्त है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइबर कुश्ती 2026 नामक एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल हैकाथॉन का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा आकलन में मानवीय निर्माण क्षमता का परीक्षण और उसे मान्यता प्रदान करना है। पुदुचेरी में आज डी ज्वेरे ट्रांसफर डे मनाया जा रहा है। ये दिन पुदुचेरी के भारत में विलय के स्मरण में मनाया जाता है। इस अवसर पर पुदुचेरी के गृह मंत्री ए नमस्सिवायम ने किजूर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यह 1954 में भारत में विलय को लेकर ऐतिहासिक जनमत संग्रह हुआ था। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज नेपाल की 3 दिन की सरकारी यात्रा पर रवाना हुए। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और सैन्य संबंध मजबूत करना है। जनरल सेठ कल टुंडी खेल के सेना मंडप में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और नेपाल के सेना मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त करेंगे। सरकार ने पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल विमान को लेकर जांच आयोग के गठन के बारे में बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को

जी बताया। इकाई ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में एक बार फिर हवा का कम दबाव का क्षेत्र बन जाने के कारण उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार तक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। बैतरणी, ब्रह्माणी, सालंदी, जालका और बुद्ध बांगल नदियों के उफान के कारण 6 जिलों में कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। इनमें बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज, क्योंझर और केंद्रपाड़ा जिले शामिल हैं, जिन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया है। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन पहली पारी में ताजा समाचार मिलने तक 6 विकेट पर 408 रन बना लिए हैं। बारिश के कारण आज पहले और दूसरे सत्र का खेल नहीं हो सका। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM।
1: चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। और आज हम गाने वाले हैं भारत की गौरव गाथा। जी हाँ, भारत की शान चाय और क्लासिक्स के अंतर्गत आपके नाम। जहाँ वेदों की वाणी ज्ञान का दीप चलाए, जहाँ बुद्ध ने करुणा बाटी प्रेम का पाठ पढ़ाया, जहाँ गंगा की लहरों में सदियों का इतिहास रहा, जिसकी मिट्टी के कण कण में भारत का विश्वास रहा। ये भारत है, मेरा भारत, मेरा देश, जिस पर हर भारतीय को अपार गर्व है। नालंदा के ज्ञान से लेकर आर्यभट्ट की गणित तक, चाणक्य की नीति से लेकर विज्ञान के हर क्षितिज तक, शून्य दिया संसार को हमने, तारों की गिनती सिखाई, योग दिया आयुर्वेद दिया जीवन की राह दिखाई, अजंता की चित्रकला बोले, खजुराहो की शिल्प कहानी, सांची के स्तूप में गूंजे इतिहास की अमर निशानी। तो चलिए ऐसे ही गर्व महसूस करते रहें, आगे बढ़ेंगे जिस गीत के साथ, वो है पूरब और पश्चिम, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज। इंदिवर के बोल को कल्याण जी आनंद जी ने सींचा संगीत से। आप जुड़े हुए जिस कार्यक्रम के साथ, वो है चाय और क्लासिक्स संचिता के साथ।

0: सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर।
1: 100.1 FM गोल पर चाय और क्लासिक्स इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं आज और अभी से लेकर मतलब 4:30 बजे से अगले 2-3 घंटे के दौरान नदियां और उत्तर 24 परगना जिलों के कुछ हिस्सों में हल्की सी मध्यम गरज की बिजली के साथ हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना बताई गई है। नदियां और उत्तर 24 परगना के जो लोग हैं वो बिल्कुल छाते के साथ रेनकोट के साथ बाहर निकले और महफूज रहे। आगे बढ़ेंगे, कार्यक्रम है चाय और क्लासिक्स और चाय और क्लासिक्स में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक गीत हो जाए। गीत है लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में, गुलजार साहब ने लिखा और पंडित हृदयनाथ मंगेशकर ने इसे संगीतबद्ध किया।
2: 5:55 100.1 FM गोल्ड खरासोना के अंतर्गत कार्यक्रम चाय और क्लासिक्स में आपके साथ हूं मैं संचिता।

आकाश के उस पार भी आकाश है, कोई नहीं है अगर तेरे साथ तो एकला चलो रे। मेरा भारत, मेरा गौरव, मेरी पहचान, मेरी अभिमान, भारत की शान। स्वतंत्रता दिवस के एक दिन बाद भारत की शान, चाय और क्लासिक्स में आपके नाम। चलिए याद करते उन क्षणों को, उन उपलब्धियों को। सारनाथ इसी साल बना भारत की 45वीं विश्व धरोहर। जुलाई 2026 में भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के मंच पर एक और बड़ा सम्मान मिला। उत्तर प्रदेश के प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। 25 जुलाई को दक्षिण कोरिया के बुसान में हुए वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके साथ भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या पता है कितनी हो गई है? 45 हो गई है। सारनाथ केवल पुरातात्विक स्थल नहीं बल्कि बौद्ध इतिहास का अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है। यही गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया, यानी भारत के मिट्टी से निकला एक ऐसा संदेश जिसने एशिया और दुनिया को आध्यात्मिक परंपराओं को प्रभावित किया। जब वैश्विक विरासत की सूची में और मजबूत से दर्ज हो जाता है तो वाकई हमें गर्व महसूस कराता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इस बार ग्लासगो में भारत का शानदार प्रदर्शन देखकर हम गर्व महसूस करते हैं और खुशी से झूम उठे। 23 जुलाई से 2 अगस्त तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर रही हूं। 39 पदक, जी हां, 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया हमारे देश ने। खास बात ये रही कि भारत ने केवल अपने पारंपरिक मजबूत खेलों पर निर्भर रहने के बजाय बॉक्सिंग, जूडो, एथलेटिक्स और पैरा स्पोर्ट्स में भी अपनी ताकत दिखाई। भारत मुक्केबाज हैं, उन्होंने अकेले 10 पदक जीते जिसमें 7 स्वर्ण थे। ये प्रदर्शन बताता है कि भारतीय खेल संस्कृति अब कुछ चुनिंदा खेलों तक सीमित नहीं रह गई। विश्व मंच पर भारत के खिलाड़ियों की विविधता और आत्मविश्वास लगातार बढ़ रहा है। इसी के साथ एक और गीत की ओर बढ़ते हुए, फिल्म का नाम थोड़ी सी बेवफाई। राहें तो बहुत है, हजार है। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की है आवाज, गुलजार के बोल को खयाम साहब ने सींचा संगीत से। कार्यक्रम चाय और क्लासिक्स संचिता के साथ 5:34।

खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1।

0: FM गोल्ड पर चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर
1: 100.1 FM गोल्ड पर चाय और क्लासिक्स। प्रादेशिक मौसम पूर्वानुमान केंद्र कोलकाता की तरफ से है एक ऑरेंज अलर्ट। नारंगी चेतना पूर्व मिदनापुर और पश्चिम मिदनापुर के लिए मौसम संबंधित। पूर्व मिदनापुर और पश्चिम मिदनापुर जिलों के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 घंटों के दौरान आज ही के दिन जो है मध्यम गरज और बिजली के साथ तीव्र बारिश हो सकती है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की बहुत संभावनाएं बताई गई है। तो जैसा कि मैंने कहा कि इन जिलों में रहने वाले जो भी आवासिक हैं, जो रहने वाले लोग हैं यहाँ के, वो बिल्कुल एहतियात बरतें, बिना छाता के बिना रेनकोट लिए बाहर ना जाएं, और क्योंकि बिजली गरजने वाली है तो इसलिए घर के अंदर रहना ही जो है सही होगा। आगे बढ़ेंगे गीत के साथ। कार्यक्रम है चाय और क्लासिक्स, भारत की शान। जी हाँ, भारत की शान तो है ही, क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस के जो है बाद 16 अगस्त है, एक दिन बाद हम याद कर रहे हैं अपने भारत के उन उपलब्धियों को जो इसी साल हमारे जवानों ने, हमारे नौजवानों ने हासिल किए। अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड की बात जो है, शानदार बौद्धिक जीत कह सकते हैं। 21 जुलाई को 2026 भारत के लिए खेल के मैदान से अलग एक और गौरवपूर्ण खबर सामने आई थी। अगर याद है, शंघाई चाइना में आयोजित 67वें इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड में भारत की 6 सदस्यीय टीम ने 2 स्वर्ण 4 रजत पदक जीते थे, अर्थात टीम के प्रत्येक सदस्य ने पदक हासिल किया था। भारत की अनौपचारिक अगर हम देखें कंट्री रैंकिंग जो है वो 7वीं रही, और प्रतियोगिता में 117 देशों ने भाग लिया, तो कंपटीशन काफी हद तक गहरा रहा होगा। और ये उपलब्धि बताती है कि भारत की प्रतिभा जो है केवल क्रिकेट, हॉकी, एथलेटिक्स के मैदान तक सीमित नहीं है। गणित जैसे अत्यंत कठिन और प्रतिस्पर्धा क्षेत्र में भारतीय विद्यार्थियों ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ युवा गणितज्ञों के बीच अपनी जगह बना ली है। आगे बढ़ेंगे एक और गीत के साथ। इस बार गीता दत्त की है आवाज, आनंद मठ है फिल्म का नाम। आगे बढ़ते हैं इस गीत के साथ। कार्यक्रम चाय और क्लासिक्स

0: 100.1 FM Gold Presents परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति
1: सरकारी उद्यम और तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत आज हम बात करेंगे भारत विस्तार के बारे में। एक बहुभाषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे केंद्रीय बजट 2026-27 में किसानों को 24/7 विस्तारित समय की परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए घोषित किया गया है। परिचय और पूरा नाम वर्चुअल इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी कि VISAAR विस्तार। केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की गई जिसके लिए 150 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मुख्य विशेषताएं और उद्देश्य है यही कि 24 घंटे सातों दिन सेवा किसानों को मौसम की जानकारी मंडी के भाव फसल सलाह एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना। AI तकनीक जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये एक बहुभाषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणाली है जो किसानों से उनकी स्थानीय भाषा में संवाद कर सकती है, सरकारी योजनाओं तक पहुंच बढ़ा सकती है, किसानों को कृषि से जुड़े विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी आसानी से एक क्लिक या कॉल पर मिल सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित व्यक्तिगत परामर्श के माध्यम से कृषि को सुलभ किफायती और प्रौद्योगिकी संचालित बनाना तथा किसानों की आत्मनिर्भरता को मजबूत करना ही इसका उद्देश्य है। किसान हेल्पलाइन नंबर 155261 डायल करके अपनी स्थानीय भाषा में तुरंत जवाब प्राप्त कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि वर्तमान में हिंदी और अंग्रेजी जल्द ही 11 भाषाओं तक विस्तारित होगा और पूरे भारत में मंडी के जो वास्तविक समय के भाव है वो जानने को मिलेगा। एग्रीस्टैक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की ज्ञान प्रणालियों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के मौसम संबंधी इनपुट बाजार कीमतों और सरकारी योजनाओं को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में एकीकृत करता है। एक डिजिटल किसान पहचान पत्र में किसानों का जो डेटा है वो संग्रहित किया जाएगा और इसमें PM फसल बीमा योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी सेवाओं को एकीकृत किया जाएगा। उत्पादकता बढ़ाने और जोखिमों को कम करने के साथ साथ मृदा परीक्षण बीज उर्वरक सिंचाई रन बीमा योजना लाभों पर मार्गदर्शन प्रदान करेगी। परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत आज हम बात कर रहे थे भारत विस्तार के बारे में।
0: 100.1 FM Gold Presents परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।

खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। FM गोल्ड पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। उन्होंने आज राजस्थान के अलवर में कहा कि केंद्र सरकार इन वर्गों पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
1: किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए हर साल एक योजना घोषित की। 14 से लेकर 26 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया है कि इन्होंने किसानों के लिए कोई बड़ी योजना जाहिर न की हो।
0: इस अवसर पर गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि अंतरित की। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। इससे राजौरी, पुंछ और नौशेरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। कालीधर रेंज से होकर बनाई गई ये सुरंग लगभग 3 किलोमीटर लंबी है। इस सुरंग की मदद से यात्रा की दूरी लगभग 13 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी काफी कम होगा। लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये सुरंग अभी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सिर्फ हल्के वाहनों के लिए खुली रहेगी। भारी वाहनों, बसों और मालवाहक वाहनों को आवागमन की अनुमति निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दी जाएगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉ. पेमा सानी चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी क्षेत्रीय पुस्तकालय के पुनर्निर्माण की घोषणा की। डॉ. पेमा सानी ने कहा कि ब्रिटिश काल में 1915 में स्थापित इस पुस्तकालय से कई पीढ़ियों के विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस कार्य के लिए डॉ. पेमा सानी और जिलाधिकारी साई कांत वर्मा की उपस्थिति में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए यूजीसी नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इंडोनेशिया के फ्लोरेस तट के पास कल सुबह आए 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत में 14 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की गई है। ये स्थिति 28 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार भूकंप में 51 लोगों की मौत हो गई और 113 लोग घायल हैं।

गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन पहली पारी में ताजा समाचार मिलने तक 9 विकेट पर 460 रन बना लिए हैं। बारिश के कारण आज पहले और दूसरे सत्र का खेल नहीं हो सका। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 3-point victory. The BWF Badminton World Championship is set to begin at the Indira Gandhi Indoor Stadium in New Delhi tomorrow. India is hosting the World Championships after 17 years. Shuttlers PV Sindhu, Lakshya Sen, Ayush Shetty, Satvik Sairaj, Ranki Reddy, and Chirag Shetty, Trisha Jolly, and Gayatri Gopi Chand will be leading the charge for the Indian contingent. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं प्राची प्रिया। प्यारे श्रोताओं, भारत ने कल ही अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। इस अवसर पर देश का विनिर्माण क्षेत्र आत्मनिर्भरता और आर्थिक प्रगति के एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में सामने आया है। पिछले 12 वर्षों में मेक इन इंडिया की सोच के अंतर्गत किए गए सुधारों ने देश के उद्योगों को नई दिशा दी है। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि भारत के विनिर्माण क्षेत्र में किस तरह बदलाव आया है। रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, मोबाइल, दवा और कपड़ा उद्योगों में क्या प्रगति हुई है, तथा जहाज, कंटेनर, ऑटोमोबाइल और सौर उपकरण निर्माण में भारत किस तरह अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। श्रोताओं, विनिर्माण क्षेत्र आज भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में लगभग 16-17% योगदान देता है और 2,70,00,000 से अधिक लोगों को रोजगार भी देता है। जुलाई 2026 में भारत का वस्तु निर्यात $44 अरब से अधिक रहा, जबकि एक वर्ष पहले ये लगभग $40 अरब था। जून 2026 में विनिर्माण उत्पाद में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। आइए अब रिपोर्ट के माध्यम से हम जानते हैं कि रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भारत ने किस तरह अपनी उत्पादन क्षमता को मजबूत किया है।
3: श्रोताओं, आत्मनिर्भरता पर जोर, लक्षित निवेश और नीतिगत प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारत रक्षा उपकरणों का एक महत्वपूर्ण उत्पादक और निर्यातक बनकर उभरा है। वित्त वर्ष 2025-26 में स्वदेशी रक्षा उत्पादन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए से अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। वर्ष 2014-15 में यह आंकड़ा 46,429 करोड़ रुपए था। रक्षा निर्यात में भी बड़ी वृद्धि हुई है। वर्ष 2013-14 में 686 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात हुआ था, जो 2025-26 में बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए हो गया। भारतीय रक्षा उत्पाद 80 से अधिक देशों को निर्यात किए जा रहे हैं। पिछले 12 वर्षों में रक्षा निर्यात में 5,500% से अधिक की वृद्धि हुई है। स्वदेशी रक्षा आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए सृजन डिफेंस इक्विपमेंट एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म यानी DIP भी महत्वपूर्ण है। मई 2026 तक इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 41,000 से अधिक विक्रेताओं और 2,70,000 उत्पाद सूचीबद्ध थे। अब बात इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की जाए, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति, SpaceX, EMC 2.0 और PLI जैसी पहलों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में तेजी आई है। वर्ष 2014-15 में इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का उत्पादन लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपए था, जो 2025-26 में बढ़कर लगभग 13.11 लाख करोड़ रुपए हो गया है, यानी लगभग 7 गुना वृद्धि। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात भी लगभग 38,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 4,24,000 करोड़ रुपए हो गया है, जो करीब 11 गुना की वृद्धि है। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भी भारत अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। दिसंबर सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम यानी सेमीकॉन 1.0 को मंजूरी दी गई थी। जुलाई 2026 में सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दी गई। जुलाई 2026 तक सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत 12 विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी जा चुकी है। इन इकाइयों से उपभोक्ता उपकरणों, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार और एरोस्पेस जैसे क्षेत्रों की चिप जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। मोबाइल विनिर्माण में भी भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को 15 जुलाई 2026 को 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मंजूरी दी गई थी। भारत में इस्तेमाल होने वाले 99.2% मोबाइल फोन अब देश में ही बनाए जाते हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता है। PLI योजना के अंतर्गत मोबाइल विनिर्माण क्षेत्र में लगभग 96,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित हुआ है।
2: श्रोताओं, रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ भारत का दवा उद्योग भी देश की विनिर्माण क्षमता और वैश्विक आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वहीं कपड़ा और परिधान क्षेत्र सबसे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देने के साथ निर्यात में भी योगदान कर रहा है। आइए अब रिपोर्ट के माध्यम

0: जानते हैं कि दवा, चिकित्सा उपकरण और कपड़ा क्षेत्र में भारत की स्थिति किस तरह मजबूत हुई है।
1: श्रोताओं, वैश्विक दवा उद्योग में भारत मात्रा के आधार पर तीसरे और मूल्य के आधार पर 11वें स्थान पर है। दुनिया की लगभग 20% जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति भारत करता है और बड़ी मात्रा में टीकों की भी आपूर्ति करता है। दवा क्षेत्र की 3 PLI योजनाओं के तहत 51,997 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आकर्षित हुआ है। बल्क ड्रग पार्क योजना को वर्ष 2020 में 3 बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने के लिए मंजूरी दी गई थी। इसका उद्देश्य विश्व स्तरीय साझा बुनियादी ढांचा तैयार करना और बल्क ड्रग के विनिर्माण की लागत कम करना है। केंद्रीय बजट 2026-27 में बायोफार्मा शक्ति यानी स्ट्रेटेजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन योजना की घोषणा की गई। और अब बात करते हैं कपड़ा और परिधान क्षेत्र की। ये भारत के प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में शामिल है और कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। ये 4,50,00,000 से अधिक लोगों को आजीविका देता है और MSME आधारित औद्योगिक विकास को भी समर्थन देता है। भारत दुनिया के सबसे बड़े कपास उत्पादकों में शामिल है और कपास के धागे का सबसे बड़ा निर्यातक है। कपड़ा और परिधान क्षेत्र राष्ट्रीय GDP में लगभग 2%, विनिर्माण क्षेत्र के कुल उत्पादन में 11% और वस्तु निर्यात में 9% योगदान देता है। वैश्विक कपड़ा और परिधान निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 4.1% है और भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक देश है। कपड़ा क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा और विनिर्माण क्षमता को मजबूत करने के लिए कपड़ा PLI योजना, PM मित्र पार्क, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन, टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, नेशनल फाइबर मिशन और हाल में घोषित मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी जैसी पहल महत्वपूर्ण है।
0: प्यारे श्रोताओं, भारत का विनिर्माण क्षेत्र केवल इलेक्ट्रॉनिक्स, दवा और कपड़ा क्षेत्र तक सीमित नहीं है। जहाज और कंटेनर निर्माण, ऑटोमोबाइल और सौर PV जैसे क्षेत्रों में भी घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। अब रिपोर्ट के जरिए आइए जानते हैं कि इन क्षेत्रों में भारत की विनिर्माण क्षमता किस तरह आगे बढ़ रही है।
2: श्रोताओं, भारत में घरेलू जहाज निर्माण क्षमता बढ़ाने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा मजबूत करने के लिए सितंबर 2025 में 69,725 करोड़ रुपए का व्यापक पैकेज घोषित किया गया। इसमें जहाज निर्माण क्षमता, समुद्री वित्त और कौशल विकास को मजबूत करने पर ध्यान दिया गया है। जहाज निर्माण विकास योजना यानी SBDS के लिए 19,989 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। इसका लक्ष्य भारत की वार्षिक जहाज निर्माण क्षमता को 45,00,000 ग्रॉस टन तक बढ़ाना है। समुद्री क्षेत्र के लिए 25,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड बनाया गया है। शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम के अंतर्गत 24,736 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कंटेनर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंस स्कीम की घोषणा की गई। जुलाई 2026 में भारत ने AP मोलर मार्सक के लिए देश में निर्मित पहला XIM शिपिंग कंटेनर तैयार किया। अब बात ऑटोमोबाइल क्षेत्र की। भारत दुनिया में दोपहिया और तिपहिया वाहनों का सबसे बड़ा बाजार है तथा यात्री और वाणिज्यिक वाहनों के लिए तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। ये क्षेत्र देश में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 3 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देता है। ऑटोमोबाइल और ऑटो कॉम्पोनेंट उद्योग की PLI योजना को सितम्बर 2021 में मंजूरी दी गई थी। मार्च 2026 तक इस योजना के अंतर्गत 67,820 रोजगार सृजित हुए। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सितंबर 2024 में PM E-Drive योजना शुरू की गई। देश भर में EV सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए 2000 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए हैं। अब सौर PV विनिर्माण की बात करें तो भारत में सौर सेल और मॉड्यूल का घरेलू उत्पादन भी तेजी से बढ़ा है। घरेलू PV बाजार का मूल्य लगभग 32,400 करोड़ रुपए है। मार्च 2025 में सौर सेल विनिर्माण क्षमता 25 GW हो गई, जबकि 2014 में ये 1.2 GW से भी कम थी।
0: श्रोताओं, भारत का विनिर्माण क्षेत्र आज लगातार बढ़ती क्षमता, मजबूत होती तकनीक और उद्योग में बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। नीतिगत समर्थन और निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी इस आधार को लगातार मजबूत कर रही है। नई उत्पादन क्षमताओं के विकास

होने के साथ भारत की वैश्विक भूमिका और बढ़ने की संभावना है। अधिक उत्पादन, अधिक मूल्य संवर्धन और मजबूत आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था भारत के विनिर्माण क्षेत्र की आगे की दिशा यही है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, प्रस्तुति सहायक मोहित सिंह। नमस्कार।

100.1 एफएम गोल खरासोना के अंतर्गत कार्यक्रम चाय और क्लासिक्स और अब प्रादेशिक मौसम पूर्वानुमान केंद्र कोलकाता की तरफ से एक ऑरेंज अलर्ट नारंगी चेतावनी दक्षिण 24 परगना के लिए मौसम पूर्वानुमान कुछ इस तरह से हैं। दक्षिण 24 परगना जिले के कुछ हिस्सों में अगले 2-3 घंटे के दौरान यानी आज के दिन 5:55 से लेकर अगले 2-3 घंटे के दौरान गरज और बिजली के साथ तेज बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने की बहुत संभावना जताई गई है। सभी से अनुरोध है कि आप सुरक्षित स्थान पर रहें। आगे बढ़ेंगे गीत के साथ किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज गाइड है। फिल्म का नाम शैलेंद्र के बोल को एसडी बर्मन ने संगीतबद्ध किया। आप सुन रहे कार्यक्रम चाय और क्लासिक्स।

100.1 FM गोल खरा सोना के अंतर्गत कार्यक्रम है चाय और क्लासिक्स, जिसके साथ अभी तक आप थे, जहां परंपरा और तकनीक, मिट्टी और मशीन, खेल और विज्ञान, संस्कृति और नवाचार सब एक साथ दुनिया के मंच पर भारत की कहानी लिख रहे हैं, तो गर्व करना बनता है। इसी के साथ ये कार्यक्रम चाय और क्लासिक्स यहीं पर समाप्त होता है। आप थे संचिता के साथ और आखिरी गीत इस कार्यक्रम का किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाज, झूठा कहीं का, फिल्म का नाम। गुलशन बावरा के बोल को आर डी बर्मन ने संगीत से सींचा। अगला कार्यक्रम 6:30 बजे से आप सुनेंगे मार्केट मंत्रा। तब तक ये गीत आप सबके लिए।

0: Good evening and welcome to the Sunday edition of Market Mantra. Today being Sunday, we'll be taking your calls on mutual funds and matters related with them. But do remember that we will not be addressing fund-specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar. कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। श्रोताओं, आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं। ये नंबर्स हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106। इससे पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट आकार रस्तोगी। आकार, मार्केट मंत्र में आपका भी
0: वार्म वेलकम। आकार,
2: थैंक यू।
1: चर्चा शुरू करेंगे मगर उससे पहले सुर्खियां।
0: फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन्फ्यूज ओवर 16,000 करोड़ रुपीस इनटू इंडियन इक्विटीज ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ अगस्त। In bullion market, gold and silver prices rise for second straight week. And domestic investors to focus in on FOMC minutes, corporate earning results and geopolitical developments for cues next week.
1: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने अगस्त के पहले दो सप्ताह के दौरान भारतीय शेयर बाजार में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया। सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे सप्ताह बढ़ोतरी हुई और घरेलू निवेशक अगले सप्ताह एफओएमसी मिनट्स कंपनियों की पहली तिमाही के नतीजे और भू राजनीतिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: दिल्ली से हमारे साथ ललित जुड़ रहे हैं। ललित जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: जी मैडम, नमस्कार।
1: नमस्कार।
3: मेरा सवाल ये था कि अगर हम एक फाइनेंशियल ईयर में कैपिटल गेन में लॉस बुक करते हैं 1,00,000 रुपए का, और सेम फाइनेंशियल ईयर में किसी और शेयर में हम 5,00,000 रुपए का कैपिटल गेन ले लेते हैं, तो मुझे क्या जो टैक्स देना पड़ेगा कैपिटल गेन में वो किस अमाउंट पे देना पड़ेगा और कितना देना पड़ेगा?
2: ललित जी, जो आपका सवाल है कि अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में कुछ कैपिटल लॉस करते हैं, जैसे अगर कुछ शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स बेच के करते हैं, और वहीं पर अगर उस सेम फाइनेंशियल ईयर में कहीं दूसरे कुछ कैपिटल गेन्स होते हैं, तो दोनों आपस में सेट ऑफ हो सकते हैं, लेकिन इसके कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं। जैसे कि अगर आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म के साथ ही हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म है वो दोनों के साथ हो सकते हैं। तो एक ये सर्टेन कंडीशंस होती है जो आपको पूरी करनी पड़ेगी। उसके अलावा जो है आपका इसके लिए आपकी जो रिटर्न है वो टाइम पे फाइल होनी चाहिए, जो 31 जुलाई की डेडलाइन होती है, आप उसको एक्सीड नहीं कर सकते। जो आप बाद में लेट रिटर्न फाइल अगर करेंगे तो फिर आप ये वाला बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। और अगर कुछ एक जो लॉस रह जाता है उसको आप नेक्स्ट 8 ईयर्स तक भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बाकी इसके लिए मेरी सलाह रहेगी कि ये जो मैंने आपको बताया है, आप एक दफ़ा बेहतर रहेगा अगर किसी एक टैक्स एक्सपर्ट से ज़रूर कंसल्ट कर लें।
1: आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, अन्य खबरों में। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक एफपीआई अगस्त के पहले दो सप्ताह में भारतीय शेयर बाजार के शुद्ध खरीदार बने हुए हैं। नवीनतम डिपॉजिटरी आंकड़ों के अनुसार

0: एफपीआई ने इस महीने अब तक घरेलू शेयर बाजार में 16,621 करोड़ रुपए का निवेश किया है। कुल निवेश में से 11,199 करोड़ रुपए शेयर बाजार में लिवाली के जरिए, जबकि 5,422 करोड़ रुपए प्राथमिक बाजार के माध्यम से निवेश किए गए हैं। जुलाई में तेज हुई खरीदारी की रफ्तार अगस्त में भी जारी है। मजबूत घरेलू आर्थिक बुनियाद और कंपनियों के बेहतर तिमाही परिणामों के कारण खरीदारी को समर्थन मिला है। इस बीच ऋण बाजार में भी विदेशी निवेशकों की रुचि देखी गई है। अगस्त में अब तक जनरल लिमिट रूट के अंतर्गत ऋण प्रतिभूतियों में 69 करोड़ रुपए का निवेश आया है। वहीं फुल्ली एक्सेसिबल रूट के माध्यम से इस अवधि में विदेशी निवेशकों ने 972 करोड़ रुपए का निवेश किया है।
1: Okay, Akar, very interesting point somebody was discussing with me, mm-hmm. and I'm in turn asking you yep. about this. What should I choose, dollar or gold?
2: I would say gold here, because when it comes to the Indian portfolios, so gold has a different role in your portfolio. It basically helps you hedge the risk. So what we have seen over the years is that whenever equities fall or there is uncertainty in the market, the fear in market, gold generally shines. So in such a scenario, it is better to have gold, but at the same time ensure that it does not form major part of your portfolio, because it is not a productive asset. When we invest in equities, when we invest in equity stocks, there we do get dividend. There the whole system, a business is working wherein, you know, it is earnings, quarterly earnings comes in. When we are investing in fixed income, therein the earnings happen through the way of interest, a fixed charge on the revenue of the companies, whether they are making profit or not. But in the case of gold, the price depends only on the demand and supply. So it is basically dependent on the other person, which is willing to pay, over and above or less than what you actually paid. So for that reason, hold it in your portfolio, but only as an insurance, maybe 5-10% or maximum 15%, not more than that.
1: Okay, and you just answered our listener about July 31st being the last date to, file our IT returns. What is important is that people do not plan their tax outgo throughout the year. So what kind of planning should one do so that they are not taken in by surprise towards the end of March, that okay, where should I invest so that my tax exposure is not much? How should one plan this?
2: So firstly, in this particular case, it was broadly related to the setting off and the carry forward of capital losses, which is impossible if someone doesn't file the returns on time, the 31st July. More than that, this planning was, had more relation in towards the deductions which we used to, take on, and the investments we used to make during the month of January to March, the Section 80C investments. All these, deductions have by far gone in the new tax regime.
1: Yeah.
2: So, but even in that case, I would say for that reason, one should not stop investing and rather look at their, the whole income or the income plan at the very beginning of the financial year, plan their advance taxes, and, if capital losses or gains planned any, plan their everything systematically.
0: Amit हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। अमित जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपने सवाल।
3: मैडम, थैंक यू। मैडम, मुझे एक्सपर्ट से सवाल ये था कि हम ऑनलाइन यदि गोल्ड लेना है 1 ग्राम 2 ग्राम ये ले सकते हैं क्या, जो इसे गोल्ड परचेस करते, म्यूचुअल फंड परचेस करते हैं, यूनिट्स परचेस करते हैं हम लोग, तो सपोज मुझे सिर्फ 1 ग्राम परचेस करना है या तो 5 ग्राम, तो क्या कुछ सोर्स कैसा है? थैंक यू।
2: अमित जी, बिल्कुल, गोल्ड अगर आपको जैसे ऑनलाइन परचेज करना है, तो देखिए, सबसे पहले जो बहुत एक अच्छा तरीका था, वो भारत गवर्नमेंट की तरफ से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स थे, जो कि 1 ग्राम के यूनिट में इशू होते थे, और इसमें जो भी गोल्ड का प्राइस होता था उसके ऊपर आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता था। बट अभी काफ़ी समय से जो इसके जो प्राइमरी इशू होता था, जो फ्रेश ट्रांचेज होती थी, वो नहीं आई है, तो ये केवल सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहा है। तो उसकी एब्सेंस में जो एक बहुत अच्छा तरीका आपके पास गोल्ड ETF या गोल्ड फंड ऑफ फंड है। इन दोनों में डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। जो गोल्ड ETF

0: है वो एक नॉर्मल शेयर के तरह स्टॉक मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करता है, और इसमें निवेश करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट हो। ये एकदम फिजिकल गोल्ड के प्राइस को ट्रैक करता है। आप काफ़ी सारी कंपनीज के गोल्ड ETFs है, उनमें से आप कोई भी जो कम खर्चे वाला कम एक्सपेंस रेशियो का हो आप उसका चुनाव कर सकते हैं। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या फिर आप नॉर्मली शेयर्स में ट्रेड नहीं करते या फिर आप एक सिस्टमैटिकली भी करना चाहते हैं SIP के ज़रिए, तो बहुत ही एक आसान तरीका है, आप गोल्ड फंड ऑफ फंड में निवेश कर सकते हैं। गोल्ड फंड ऑफ फंड एक म्यूचुअल फंड है जो कि इन टर्न आपका पैसा जाके ETF में इन्वेस्ट कर देगा। तो एक कन्वीनियंस के तौर पे और एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए गोल्ड फंड ऑफ फंड वहां पे थोड़ा सा ज्यादा कन्वीनियंट रहता है।
1: गाजियाबाद से हम आशु को जोड़ेंगे, मगर उससे पहले श्रोताओं आइए जान लेते हैं कि सप्ताह के दौरान सर्राफा बाजार की स्थिति कैसी रही। सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे सप्ताह बढ़त दर्ज की गई। अमरीकी डॉलर और ट्रेजरी यील्ड में गिरावट तथा उम्मीद से कम अमरीकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों के चलते फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना कम हुई। इन सभी कारणों से सोने और चांदी की कीमतों को बल मिला। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर अनुबंध वाला सोना सप्ताह के दौरान 1.8% बढ़ा और 1,54,506 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं सितंबर अनुबंध वाली चांदी लगभग 2% बढ़कर 2,35,924 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची। कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर अनुबंध वाला सोना सप्ताह के दौरान 0.8% से अधिक बढ़कर $4,437 से अधिक प्रति ट्रायउंस पर बंद हुआ। वहीं सितंबर अनुबंध वाली चांदी सप्ताह के दौरान 2.5% की बढ़त के साथ $65.10 प्रति ट्रायउंस पर पहुंच गई। और गाजियाबाद से हम जोड़ रहे हैं आशु को। आशु जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: थैंक यू। एक्चुअली लिटिल कंफ्यूज्ड, आई एम अ रेगुलर इन्वेस्टर इन म्यूचुअल फंड्स, बट द पॉइंट इज आई रेड एन आर्टिकल दैट मोस्ट ऑफ द or the biggest mistake a person investing in mutual fund does is that not tracking it. Like I was told, like you invest it and keep on investing it and forget about it, don't look into it much. So I did this, and then I started tracking it through one of the applications on cell phone, etc. I came to know that some funds which were doing pretty good, according to me, they said this is not doing good, this is off the track, do this, do that. So I am now confused, like I am a regular investor, and what is the approach which I should follow? Should I look into it and track it regularly, and should I trust on the various applications which are there available, growth, it's like some there were 2-3 desire growth or something that they are saying that stop investing in this mutual fund and invest in that mutual fund. So I don't know which way to go as of now.
3: Too many voices.
2: So that is one thing. And in related to this is, what is XIRR? So these are the two things. I just need some clarity on these two points. Thank you.
0: Sure. So this is actually a very common problem which, you know, a normal investor goes through, and we often get these kind of questions. So firstly, when we say that you don't have to track it regularly, what we mean is that some people get obsessed with their portfolios, with their investments, like investment in direct equities. What they start doing is that they start opening their portfolio every single day, or maybe two times in a day, and start tracking it, like whether it performed better than the previous day or not. So you should definitely be tracking your portfolio, but not on a daily or a weekly or even on a monthly basis. Maybe once in 6 months or once in a year is also fine. At the same time, as you said that, some funds were previously doing good, but now they are not doing good. So yeah, definitely. So a mutual fund scheme does go through both the phases. At some point of days, it would do better, and this is there, and at some point of days, it won't do better. So every fund would go through a good as well as a bad phase. So what we need to do is, we don't have to get out of a scheme immediately when it goes through a very short term underperformance. So it is quite possible that a fund may have underperformed over the last 1 month, over the last 3 months, but that should not be the sole reason to just get out of it. What one should be doing is to go and check the long-term performance and the reasons behind it,

0: So and you know, give it sufficient time. At the same time, you know, as you have been saying that you know, you there are multiple apps here definitely. So while, you know, increased number of fintech apps have you know, made it very simpler for us to, you know, start investing and, you know, track our portfolios, this is one of the problems which has emerged, because, you know, you get to hear, as Sir was saying, from too many voices. So here the best part would be to compare its performance from the category average and other schemes in that particular category. The XIRR you were talking about is basically the annualized return when you do not invest in a lump sum, when you invest in SIP, when the money outflow and inflow is at irregular intervals. So when you just make one lump sum investment and then make a withdrawal, there are just 2 points. That is basically the CAGR. And when you invest through SIPs and, you know, there are multiple inflows or any other transaction, then the annualized return calculated is XIRR.
1: आकर एक और सवाल मेरे मन में है जो बहुत सारे लोग, मैं यकीन करती हूँ कि बहुत सारे लोगों के भी मन में होगा जो नए इन्वेस्टर होंगे या जो कुछ समय से इन्वेस्ट कर रहे होंगे थ्रू SIPs. हमारे पास अगर एक कॉर्पस ऑफ मनी है तो हम उसे सीधे तौर पर लमसम अमाउंट की तरह किसी फंड में लगाएं जो फंड हमें लगे कि ये फंड ठीक है, या हमें एक रोज़ रोज़ धीरे धीरे करके हमें ख़रीदना चाहिए जबकि हमारे पास एक साथ ही उतने पैसे मौजूद हैं, फिर भी हम फ्रैक्शंस में ख़रीदें या हम एक साथ ही जो पूरा बकेट है वो पोर कर दें?
0: बिल्कुल फ्रैक्शंस में एक साथ बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि देखिए जब भी आप इक्विटी में निवेश करते हैं तो हमारे को नहीं पता कि उस दिन जो मार्केट का लेवल है वो उसके आगे वो और गिरेगा कि नहीं गिरेगा, ऊपर उठेगा कि नहीं उठेगा. शॉर्ट टर्म में हम लोग कभी भी मार्केट की मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट नहीं कर पाते. तो ऐसे में जो सबसे बड़ा खतरा ये रहता है कि मान लीजिए अगर किसी के पास लमसम अमाउंट है और उसने आज के आज पूरा का पूरा अमाउंट निवेश कर दिया और ठीक एक हफ्ते के बाद मार्केट एकदम से नीचे गिर गई 10% 20%, तो जो पूरा का पूरा पैसा है उस पूरे के पूरे पे वो रिस्क आ जाएगा, वो वैल्यू एकदम से नीचे आ जाएगा. यहाँ पे
1: 10-20% का तुरंत का घाटा.
0: बिल्कुल. अगर मान लीजिए अगर किसने 1 लाख लगाया वो सीधा 90,000 हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा. और यहाँ पे एकदम से इतना बड़ा लॉस देख करके बहुत बार ऐसा भी होता है कि इन्वेस्टर्स को एक एंग्जाइटी होती है,
1: हतोत्साहित मन हो जाता है.
0: हाँ जी. तो वो उस वक्त फिर उनको ये लगता है कि जितना पैसा बचा है वो मार्केट से निकालो और यहाँ से भागो, और उसके बाद वो लोग फिर कभी इक्विटी में निवेश नहीं करते, जो कि सबसे बड़ी गलती हो जाती है. तो यहाँ पे बेनिफिट जो अगर आप फ्रैक्शंस में पैसे लगाएंगे तोड़ तोड़ के, तो ये रहेगा कि मान लीजिए उस 1 लाख में से आज आपने खाली 10,000 लगाया हो, तो आपने सोचा होता कि मैं हर महीने एक इक्वल इंस्टॉलमेंट लगाऊंगा, अगले महीने तक वो मार्केट 10% गिर गया होता. तो यहाँ पे आप जब वो और नए 10,000 लगा रहे हैं, आप अपने परचेज कॉस्ट को एक तरीके से एवरेज आउट कर रहे हैं, क्योंकि अगर पहले आपने थोड़ा महंगा खरीदा था, अभी आप थोड़ा सस्ता खरीदे और थोड़े ज्यादा यूनिट्स खरीद रहे. तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आप SIP के थ्रू निवेश करिए. अगर आपके पास लमसम है भी तो आप उसको एक अलग बैंक अकाउंट में डाल के वहां से SIP चालू कर सकते हैं. और अगर आपको इस चीज का डर लगता है कि आप वो पैसा वहां से कहीं और खर्च कर देंगे, कंज्यूम कर देंगे, जो कि आमतौर पर रहते हैं, तो आप STP का, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान का इस्तेमाल कर सकते हैं. आप अपना फंड हाउस चुनिए, उनके एक लिक्विड फंड में उस पैसे को पूरे लमसम को डालिए और वहां से एक STP सेटअप कर दीजिए अपने इक्विटी फंड के लिए.
1: बिल्कुल. दिल्ली से हमारे साथ वीर जुड़ रहे हैं. वीर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
2: नमस्कार सर.
0: नमस्कार
2: सर. मैं ये पूछना चाहता था कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से लॉन्ग टर्म गेन्स एप्रिशिएट हो जाएगा जी?
0: शॉर्ट टर्म से अगर जो शॉर्ट टर्म गेन से आप लॉन्ग टर्म लॉस सेट ऑफ करना चाहते हैं, तो जहां तक मेरी जानकारी है वो संभव नहीं है. लॉन्ग टर्म लॉस केवल लॉन्ग टर्म गेन के साथ ही हो पाते, बट इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक दफ़ा एक टैक्स एक्सपर्ट को जरूर कंसल्ट कर लें.
3: सो अकाल, वी बीन टॉकिंग अबाउट क्वाइट अ बिट ऑन यू नो हाउ द मार्केट पैनिक हैपेंस अमंगस्ट द पीपल एंड यू हैव एड्रेस्ड इट क्वाइट अ बिट एज वेल. गिवन द मार्केट स्विंग्स दैट वी आर सीइंग दीस डेज, primarily due to the geopolitical developments, how should an investor deal with the market panic? You know, of course you are saying stay there, buy you know, through SIP and all that, but are there any other ways in which a panic can be tackled?
0: So I think firstly one should be, you know, reduce

0: Start by weeding out the schemes which hold less than 5% in your portfolio, or have a very narrow investment mandate, say some kind of sectoral or thematic fund, and doesn't invest on through the complete universe, or doesn't have that flexibility with the fund manager.
1: Okay, moving on, the domestic investors are set to navigate a week packed with key market triggers, including the release of the FOMC and RBI MPC minutes, macroeconomic data, quarterly earning reports, and geopolitical developments. Investors are likely to take cues also from foreign institutional investor flows, commodity prices, and currency movements. Market participants will closely monitor the monthly unemployment data and the latest figures on core industries growth. Meanwhile, the primary market is set to remain active this week with six new mainboard IPOs opening for subscription and five mainboard IPOs scheduled to make their stock market debut. Globally, investors will closely monitor geopolitical developments surrounding the West Asia conflict. In Japan, GDP estimates and trade data will remain on investors' radar, while inflation figures from the UK will also be closely watched. Akar, very quickly, we'd like to understand from you regarding the IPOs. Would you recommend our listeners to actively participate in the IPOs and go in for them?
0: For a normal retail investor, unless until you have those skills to evaluate it and have that temperament, don't go for them directly, because if you invest in a mutual fund scheme, your fund manager is already there to do that hard bit of work and take those decisions. But yes, at the same time, if you feel very strongly positive of a particular IPO, you have analyzed it yourself, you understand what kind of work that company does, and you have gone through the annual the complete prospectus, and you have that temperament that if soon after investing on the listing day there won't be much gains, but you still be able to okay and hold the stocks for a longer period of time, then yeah, definitely you can go and invest.
2: अगर मेरे पास कुछ पैसे हों जो मैं हर महीने खर्च करना चाहूँ SIP में इन्वेस्ट निवेश करना चाहूँ तो फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप और स्मॉल कैप लार्ज कैप ये अलग अलग जो सेगमेंट्स होते हैं इसमें मैं परफॉर्मेंस देखते हुए मैं सब में थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करूं या मैं ये देखूं कि यहाँ इस पर्टिकुलर कैप में मुझे सबसे अच्छी बढ़त दिख रही है ग्रोथ दिख रही है तो मैं यहाँ पर अपना वो जो सारा पैसा है हर महीने जो
1: व्हाट इज द क्राइटेरियन
2: जी बिल्कुल
0: इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप ये तय करें कि आपको उस पैसे की आवश्यकता कितने सालों के बाद होगी वो क्या पर्पस है जिसके लिए आप निवेश कर रहे हैं क्योंकि इक्विटीज़ के अंदर भी जैसे कि आपने कहा जो सारी कैटेगरीज है फ्लेक्सी कैप हो गया स्मॉल कैप हो गया मिड कैप हो गया इन सब के लिए एक अलग अलग सूटेबल होराइजन होता है केवल ये देखना कि हाँ स्मॉल कैप फंड्स ने पिछले साल बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए तो मैं उसमें निवेश कर देता हूँ सही नहीं होएगा क्योंकि स्मॉल कैप फंड्स ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं इनमें उतार चढ़ाव बहुत जोर से आता है और आमतौर पर इसके लिए 7 से 10 साल का होराइजन रखना चाहिए तो अपना होराइजन पक्का कीजिए फिर फंड का चुनाव कीजिए
2: बिल्कुल आकार बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए मेरे और राजेश के सवालों के जवाब देने के लिए
0: थैंक यू
1: आकार फॉर बीइंग विद अस एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन्फ्यूज ओवर 16,000 करोड़ रुपीस इनटू इंडियन इक्विटीज ड्यूरिंग द फर्स्ट टू वीक्स ऑफ ऑगस्ट In bullion market, gold and silver prices rise for second straight week, and domestic investors to focus on FOMC minutes, corporate earning results, and geopolitical developments for cues next week. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें
4: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी

0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। उन्होंने आज राजस्थान के अलवर में कहा कि केंद्र सरकार इन वर्गों पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
1: किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए हर साल एक योजना घोषित की। 14 से लेकर 26 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया है कि इन्होंने किसानों के लिए कोई बड़ी योजना जाहिर न की हो।
0: इस अवसर पर गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि अंतरित की। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। इससे राजौरी, पुंछ और नौशेरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। कालीधर रेंज से होकर बनाई गई ये सुरंग लगभग 3 किलोमीटर लंबी है। इस सुरंग की मदद से यात्रा की दूरी लगभग 13 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी काफी कम हो जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉ. पेमा सानी चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी क्षेत्रीय पुस्तकालय के पुनर्निर्माण की घोषणा की। डॉ. पेमा सानी ने कहा कि ब्रिटिश काल में 1915 में स्थापित इस पुस्तकालय से कई पीढ़ियों के विद्यार्थियों लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस कार्य के लिए डॉ. पेमा सानी और जिलाधिकारी साई कांत वर्मा की उपस्थिति में एक समझौता पर हस्ताक्षर भी किए गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा है कि वे राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कंठनकुलथूर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है। उपराष्ट्रपति ने 2014 के बाद से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देश के विस्तार और उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का उल्लेख किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस वर्ष जून में हुई UGC नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए UGC नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र JPSC की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और JSSC CGL परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग कर रहे हैं। JPSC JSSC रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूहों के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत हो गई। इसे यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने रात भर में 822 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 460 रन बनाए। भारत के लिए देवदत्त पडिक्कल ने 167 रन की शानदार पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय प्रशांत कुमार सिन्हा।

0: 1400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
1: किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए हर साल एक योजना घोषित की। 14 से लेकर 26 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया है कि इन्होंने किसानों के लिए कोई बड़ी योजना जाहिर न की हो।
0: जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। इससे राजौरी, पुंछ और नौशेरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। कालीधर रेंज से होकर बनाई गई ये सुरंग लगभग 3 किलोमीटर लंबी है। इस सुरंग की मदद से यात्रा की दूरी लगभग 13 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी काफी कम हो जाएगा। लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये सुरंग अभी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सिर्फ हल्के वाहनों के लिए खुली रहेगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉक्टर पेमा सानी चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी क्षेत्रीय पुस्तकालय के पुनर्निर्माण की घोषणा की। डॉक्टर पेमा सानी ने कहा कि ब्रिटिश काल में 1915 में स्थापित इस पुस्तकालय से कई पीढ़ियों के विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस कार्य के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वो राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथूर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है। उन्होंने 2014 के बाद से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देश के विस्तार और उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का उल्लेख किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस वर्ष जून में हुई UGC नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए UGC नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र JPSC की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और JSSC CGL परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग कर रहे हैं। JPSC JSSC रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत हो गई। इसे यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने रात भर में 822 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 460 रन बनाए। भारत के लिए देवदत्त पड्डीकल ने 167 रन की शानदार पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Abhineet Shukla. Union Home Minister Amit Shah has said that empowering the youth, poor, women and farmers is essential to achieving the goal of making India a fully developed nation by 2047. He said the Narendra Modi government is giving special attention to the welfare and development of these sections. Mr. Shah was addressing a program in Alwar, Rajasthan,

0: 2,500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत। महिला हॉकी विश्व कप में भारत ने चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ खेलकर अपने अभियान की शुरुआत की। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। अब समाचार विस्तार से। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह आज राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
1: 14 से लेकर 26 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया है किसानों के लिए कोई बड़ी योजना जाहिर न की हो। आज मैं कांग्रेसियों को कहना चाहता हूँ, MSP पर सबसे ज्यादा अनाज क्विंटल में अगर किसी ने खरीदा है तो नरेंद्र मोदी जी ने खरीदा है।
0: श्री शाह ने कहा कि दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने की अपार क्षमता है और गुजरात के किसानों ने इसे साबित कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में अधिक दूध देने वाली गायों और भैंसों की नस्लें राजस्थान के हर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री ने किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि भी अंतरित की। इससे पहले गृह मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। पूरे राष्ट्र ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अटल जी की विरासत राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की प्रगति में पूर्व प्रधानमंत्री की भूमिका को अतुलनीय बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जनसेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण के प्रतीक हैं, जो भविष्य में भी हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वो राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथूर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है।
2: Over the years, SRM Institute of Science and Technology has built an academic ecosystem that encourages interdisciplinary learning, creativity, entrepreneurship and critical thinking. I am pleased to note SRM growing emphasis on strategic technologies such as artificial intelligence, quantum technologies, semiconductor research, robotics, biotechnology and sustainable development. These fields will save the economics and the society's future.
0: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव के

0: ले जलाए। विद्यार्थियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग दोहराई। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को कल दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए यूजीसी नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हर उत्तर पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। एनटीए ने कहा कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 18 अगस्त है। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे राजौरी, पुंछ और नौशेरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा।
1: लगभग 3 किलोमीटर लंबी यह रणनीतिक सुरंग कालीधार पर्वत श्रृंखला के बीच बनाई गई है। इसके शुरू होने से मौजूदा मार्ग में कठिन हिस्से को बाईपास किया जा सकेगा और यात्रा की दूरी करीब 13 किलोमीटर कम हो जाएगी। इससे यात्रा का समय भी काफी कम होगा। यह सुरंग ऐसे समय में खोली गई है जब अखनूर से राजौरी होकर पुंछ जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण और उन्नयन का काम तेजी से चल रहा है। लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह सुरंग अभी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सिर्फ हल्के वाहनों के लिए ही खुली रहेगी। भारी वाहनों, बसों और मालवाहक वाहनों को आवागमन की अनुमति निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दी जाएगी। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राज्य में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की। जो लोग आयुष्मान भारत के दायरे में नहीं आते वे राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों योजनाओं में 1950 बीमारियां शामिल हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी क्षेत्रीय पुस्तकालय के पुनर्निर्माण की घोषणा की। डॉ. पेम्मा सानी ने कहा कि ब्रिटिश काल में 1915 में स्थापित इस पुस्तकालय से कई पीढ़ियों के विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस कार्य के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने चिकित्सकीय मार्गदर्शन पर आधारित चिकित्सा पद्धति पर बल दिया है। नई दिल्ली में प्रोफेसर आनंद एन मालवीय और डॉ. प्रशांत कौशिक की पुस्तक रूमेटोलॉजी एसेंशियल्स अ न्यू फ्रंटियर फॉर एस्पायरिंग क्लिनिशियंस के विमोचन के अवसर पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि त्रिआयामी दृष्टिकोण अनावश्यक दवाओं का उपयोग करने, जांच कम करने, निदान में देरी को रोकने और ये सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है कि मरीज सही समय पर उचित विशेषज्ञ से परामर्श ले सके। राजस्व खुफिया निदेशालय ने एक ऐसे बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई सुपारी को बांग्लादेशी बताकर भारत में आयात करता था। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जांच में अब तक 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा के संभावित राजस्व नुकसान का पता चला है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
2: DRI ने बताया कि जांच के दौरान जुटाई गई खुफिया जानकारी से पता चला कि कुछ गिरोह बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करते हुए साफ्टा का लाभ ले रहे थे। ये सिंडिकेट इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों से उत्पन्न सुपारी का आयात करते थे, लेकिन भारत में आयात के दौरान उसका मूल देश बांग्लादेश घोषित कर रहे थे। खुफिया जानकारी के आधार पर DRI ने कोलकाता और विशाखापत्तनम में आयातकों, कस्टम्स ब्रोकरों और IEC धारकों से जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में सुपारी के मूल होने की पुष्टि करने वाले कई दस्तावेज और अन्य साक्ष्य बरामद किए गए। DRI अधिकारियों ने करीब 75 लाख रुपए की नकदी भी जब्त की, जिसे अवैध

0: अवैध रूप से आयात किए गए सामान की बिक्री से प्राप्त रकम होने का संदेह है। मामले की जांच जारी है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन ने रूस के दक्षिण पश्चिमी रोस्तोव क्षेत्र को निशाना बनाकर ड्रोन से कई हमले किए, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इसे यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने रात भर में 822 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। वहीं रूस के हमलों में यूक्रेन में 5 लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी अगले 2 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में बाढ़ का खतरा बना हुआ है।
2: उड़ीसा के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 49 ब्लॉक और 5 शहरी इलाके प्रभावित है और लगभग 2.37 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रभावित इलाकों में करीब 293 राहत शिविर चल रहे हैं। मुख्य सचिव अनु गर्ग ने जिला कलेक्टरों के साथ स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को फील्ड में रहने का निर्देश दिया है। साथ ही बाढ़ प्रभावित जिलों में कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। बाढ़ प्रबंधन का अनुभव रखने वाले वरिष्ठ अधिकारियों को भद्रक, बालेश्वर और जाजपुर जिलों में तैनात किया गया है, जबकि प्रभावित जिलों की मदद के लिए एक अतिरिक्त मुख्य अभियंता को भेजा गया है। भद्रक, केंदुझर और मयूरभंज जिलों में कल स्कूल बंद रहेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व कप में अपने पहले मुकाबले में पूल डी में चीन को कड़ी टक्कर देते हुए 2-2 से ड्रॉ पर रोका। विश्व कप में कल भारतीय पुरुष हॉकी टीम पूल डी में अपने दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के साथ खेलेगी। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होने जा रही है। भारत 17 वर्ष बाद इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। भारतीय टीम को इस प्रतियोगिता में पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद से खास उम्मीद होंगी। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 460 रन बनाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने और विकसित भारत 2047 में योगदान करने का आह्वान किया। भारत ने बांग्लादेश से सुपारी आयात करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। 2500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 गिरफ्तार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah launches development projects worth over 6,400 crore rupees at Alwar in Rajasthan, asserts empowering youth, poor, women and farmers essential for achieving goal of developed India by 2047. Vice President C.P. Radhakrishnan calls upon students to embrace nation first and contribute to Viksit Bharat 2047. India dismantles large-scale areca nut import racket from Bangladesh, uncovering 2,500 crore rupees revenue loss, 9 arrested. Red alert issued for very heavy rainfall over Gangetic, West Bengal and Odisha tomorrow. Ukraine and Russia exchange missile and drone strikes, claiming 11 lives on both sides. In hockey, India begin campaign with 2-2 draw against China in FIH Women's World Cup in the Netherlands.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार में मोहम्मद जुबैर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह आज राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा है कि वह राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथुर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए JPSC और JSSC परीक्षाओं को रद्द करने की फिर मांग की। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी छात्रों को कल दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आज UGC नीट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है। अंग्रेजी विषय की दोबारा परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। वहीं कॉमर्स का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगा। समाज शास्त्र का पेपर 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राज्य में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की भी शुरुआत

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह कल राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा है कि वे राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथुर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए JPSC और JSSC परीक्षाओं को रद्द करने की फिर मांग की। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी छात्रों को आज दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कल UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों, अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद यह फैसला लिया गया है। अंग्रेजी विषय की दोबारा परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से

0: दोपहर 12 बजे तक पहली पारी में आयोजित की जाएगी। वहीं कॉमर्स यानी वाणिज्य का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगा। समाज शास्त्र का पेपर 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पारी में आयोजित किया जाएगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की पीने के पानी की गुणवत्ता पाई रिपोर्ट के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल पूरे रेलवे नेटवर्क में पीने के पानी की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यात्रियों के लिए स्वच्छ पीने के पानी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। उपायों के अंतर्गत वाटर कूलरों सहित पूरे रेलवे नेटवर्क में लगभग 20,000 स्थानों पर नई टैंक टू टैप जल एवं निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी। एयर इंडिया ने कल कहा कि विशाखापत्तनम आने जाने वाली उसकी सभी उड़ानों का संचालन आज से भोगपुरम में नए अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होगा। इसके लिए मौजूदा एयरपोर्ट कोड VTZ का इस्तेमाल किया जाएगा। एक प्रेस विज्ञप्ति में एयर इंडिया ने बताया कि भोगपुरम और दिल्ली के बीच हर हफ्ते 14 उड़ानें होंगी। 70,342 वर्ग मीटर में फैले इस नए टर्मिनल से यात्रियों को ज्यादा सुविधा मिलेगी और परिचालन क्षमता भी बढ़ेगी। भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व कप में अपने पहले मुकाबले में पूल डी में चीन को कड़ी टक्कर देते हुए 2-2 से ड्रॉ पर रोका। विश्व कप में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम पूल डी में अपने दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के साथ खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Abhineet Shukla. Union Home Minister Amit Shah has said that empowering the youth, poor, women and farmers is essential to achieving the goal of making India a fully developed nation by 2047. He said, the Narendra Modi government is giving special attention to the welfare and development of these sections. Mr. Shah was addressing a program in Alwar, Rajasthan, yesterday after laying the foundation stones for and inaugurating development projects worth over 6,400 crore rupees across 17 districts of the state. He said the government has launched several initiatives for the welfare of farmers. He noted that from 2014 to 2026, the Modi government had introduced major schemes for farmers and continuously increased the minimum support price. Mr. Shah also highlighted the potential of the dairy sector to transform the rural economy. Vice President C.P. Radhakrishnan has called upon graduating students to use their knowledge, skills and innovation for nation building, guided by the principle of Nation First. Addressing the 22nd convocation of SRM Institute of Science and Technology at Kattankulathur near Chennai, the Vice President said, India's youth have a vital role to play in the country's journey towards Viksit Bharat by 2047. Recalling India's response to the COVID-19 pandemic, Mr. Radhakrishnan said, India supplied vaccines to more than 100 countries, demonstrating its commitment to global welfare and humanity. Air India has announced that all its flights to and from Visakhapatnam will operate from the new Alluri Sitaram Raju International Airport at Bhogapuram from today using the existing airport code VTZ. In a press release, Air India informed that the airline will continue to operate 14 weekly flights from Bhogapuram and Delhi, providing convenient connectivity to major domestic and international destinations through its hubs. Spread over 77,342 square meters, the new terminal offers enhanced passenger comfort and operational efficiency. Following the Controller and Auditor General of India CAG report on drinking water quality, Railway Minister Ashwini Vaishnav yesterday conducted a day-long review of drinking water quality across the railway network. He also directed officials to take immediate corrective measures to ensure safe and clean drinking water for passengers. As part of the measures, a new tank-to-tap water filtration and monitoring system will be installed at nearly 20,000 locations, including water coolers, and a comprehensive water filtration and monitoring system will be installed at approximately 20,000 points across the railway network along with the replacement of water tanks. The minister stressed the need for strict compliance with regular water quality testing.